बोल दिवाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार।

पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाह दान भरोसा दान

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meters ਯਾਨੀ 873 kilohertz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो

0: दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से ए आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत
2: जन जने ता भगत जन कह दाता कह सूर नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवावे नूर। उस परवरदिगार दे हुक्म नाल इंसान इस लोक विच माता दे उदर तो जन्म लेंदा है। इसी ही सिलसिले विच इस धरती ते गुरुआ पीरा शूरवीरा योध्या ने जन्म लिया। उसकी रजा विच रहन वाले प्रभु प्यारे भगत देश भगत भी बन विचरे और अपने मकसद दे विच कामयाब हो गए। गुरुआं पीरां ते योध्यां दे जीवन तो प्रेरणा लेके ऐसी शख्सियत उसारी हो गई जो कि देश लई एक मिसाल बन विचरे। पूर्ण रूप च रब दी रजा विच रह के उसका उपासक उसकी भक्ति करन वाला भगत ही देश भगत बन निबड़ता है। ऐसे भगत ही चिंतक दार्शनिक ते शहीद हो निबड़ते ने। गल पावे देश लई आजाद होने वाले शहीद भगत सिंह हुरंद ही क्यों ना होवे। बहुआयामी शख्सियत दे स्वामी सन शहीद भगत सिंह। आपने अपने जीवन काल विच 70 दे करीब पुस्तकां पढ़िया वाचियां और उस तो कुछ ना कुछ सीखिया। आजादी संग्राम दे दौरान अपनी सजा भुगतदे हुए भी उन्होंने 404 पन्नियां दा ग्रंथ ही लिख छड्या जिस विचों

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहां केवल आनंद

इस प्रोग्राम विच तुहाड़ियां व्हाट्सएप राही भेजियां गईयां फरमाइशां दे गीत सुनवाए जाणगे। दोपहर 12:05 ते परिवारक प्रोग्राम वस दे वेले विच अज विश्व रेबीज दिवस ते जानकारी देणगे डॉक्टर नंदिका खुल्लर। इस दे नाल ही मेहमान बरूहां ते सिलसिले दे तहत निशान सिंह ते सुरिंदर कौर नाल कीती गलबात भी पेश कीती जाएगी। फौजी मीरां लई प्रोग्राम दोपहर 1:15 ते लैके हाजिर होवांगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम विच सर्जिकल स्ट्राइक अते ऑपरेशन सिंदूर नू भारत दी दहशतगर्दी विरोधी नीति दी एक नवी मिसाल दसिया, कहा कि अग्गे भी दहशतगर्द हमलियां दा जोरदार जवाब दिता जावेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी होर देश दे इलाके ते कब्जा करना नहीं चाहता, पर किसी खतरे की स्थिति विच अपनी सुरक्षा ते रणनीतिक खुद मुख्तियारी की राखी करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि तकनोलॉजी एक मेडिकल डॉक्टर दे मनुखी एहसास की थान नहीं लै सकती। देश अज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वरेगांठ मना रहा है। देश अज महान इनकलाबी शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिहाड़ा मना रहा है। इस मौके अज लुधियाना विखे जश्ने इनकलाब होगा। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान अज नवी दिल्ली विच दो रोज़ा राष्ट्रीय खेतीबाड़ी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पशु पालन अते डेयरी विभाग अज नवी दिल्ली विच पशु धन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेगा। ये पोर्टल हिंदी अते अंग्रेजी तो इलावा 11 खेतरी भाषावां विच उपलब्ध होगा। पंजाब सरकार वालों पट्टीदर जातां दी बहुगिनती वाले 3763 पिंडां नूं मॉडल पिंडां वजों विकसित करन लई एक पहलकदमी की शुरुआत। विकास कार्यां लई 201 करोड़ रुपए जारी। तरन तारण दे नौशहरा पन्नुआ विखे भलके 29 सितंबर नूं जिला पदरी किसान मेला लगाया जा रहा है। अते पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जिला मोगा विखे तैनात SHO इंस्पैक्टर सुनीता बावा अते पंजाब होमगार्ड गुरअवतार सिंह नूं 50,000 रुपए रिश्वत लेंदिया रंगे हाथ काबू किया है। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:02 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ।

जाने तू या जाने ना फिल्म का गीत तुसी राशिद अली की आवाज च सुनिया आकाशवाणी जलंधर ते सोनी स्वर प्रोग्राम जिहड़ा कि इस वेले शुरू हो चुका है। प्रोग्राम सुनने वाले सारे दोस्तों नू तुहाडे दोस्त बीरेंद्र का नमस्कार। सुनाओ जी, हाल चाल, सेहत, सारा कुछ ठीक ठाक है ना? चलो बहुत ही वधिया गल है। वेखो जी, कुदरत तो तड़के तो ही अपना दफ्तर खोल चुकी है। बॉस सूरज ने अपने चानण नाल सब तो पहला इस दफ्तर च अपनी हाजिरी लवाई है, तो फिर कुदरत दे जिहड़े बाकी कर्मचारी ने ना, पंछी ने, जी जंत ने, वह इस चानण दे नाल ही आपो अपने काम ते चहक दे लग गए। तो हुण आपां जिहड़े बंदे हाँ, आपां वी तां बस काम ते जाण दी तैयारी कर रहे हैं। तुसीं वी थोड़ी देर च नहा धो के बस कपड़े पा के शीशे दे सामने खलोते होवोगे, तो फिर खुशबूदार जिहा परफ्यूम छिड़क के अपने काम ते निकल पाओगे। बस मेरी एक सलाह है जी कि जिद्दां अपनी ड्रेसिंग टेबल ते पए तुसी परफ्यूम दा इस्तेमाल रोज़ करदे हो ना, उसे तरह तुहाडे मन अंदर जिहड़ी परफ्यूम दी चंगी खासी कलैक्शन है ना, इहदा इस्तेमाल भी करिया करो। वेखो तुहाडे मन अंदर ना हलीमी नाम दा एक परफ्यूम है, इहनू जदों तुसी अपनी जुबान ते छिड़कदे हो तो तुहाडी बोली चों जो सांझ ते अपनात दी महक आउंदी है ना, उहदा कोई जवाब ही नहीं। इस महक दा असर काफ़ी दिन तक रहिंदा है, उसे महक करके ही तुहाडे तो कोई भी दूर नहीं होना चाहता, तुहाडे नाल ही रहना चाहता। एक ना तुहाडे मन विच लगन नाम दा इत्र भी है, इहनू जदों तुसी अपने काम ते छिड़कदे हो तां इहदी महक तुहाडे काम चों आउंदी, उहदे करके हर कोई तुहाडे काम नूं सलाउंदा, तुहाडे नाल ही काम करना चाहुंदा है, ते तुहाडे काम दीआं फिर मिसालां दित्तीआं जांदीआं। सो जी, ड्रैसिंग टेबल ते पए परफ्यूम नूं जरूर वरतो, पर अपने अंदर जिहड़े तुहाडे बहुत सारे परफ्यूम पए ना, इहनां दा भी इस्तेमाल करो। इहदे नाल तुहाडे किरदार चों जिहड़ी विलक्खण महक आएगी ना, उहदी गल ही वक्खरी होएगी। ते फिलहाल तुहानू सोहणी सवेर प्रोग्राम च यह महकदा जिहा गीत सुना रहे हैं। गीत सुनो ते फिर मिलते हैं। आकाशवाणी जलंधर तो तुसीं सोहणी सवेर प्रोग्राम सुन रहे हो।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवें प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
0: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक वक चैनल्स ते FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स ते। इहदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
0: ब्रेक तो बाद सोनी स्वर प्रोग्राम च फिर तो तुहाडा स्वागत है जी। आकाशवाणी जलंधर ते साडा इह प्रोग्राम प्रसारित किया जा रहा है ते अज दा इह प्रोग्राम तुसी अपने दोस्त वीरेंद्र दे नाल सुन रहे हो। ते अज जिहड़ा 28 सितंबर दा दिन है, इह साडे सारिआं दे लई इस करके खास है क्योंकि अज दे ही दिन साल 1907 विच शहीद आजम भगत सिंह होरां दा जन्म होया सी। देश की आज़ादी के लिए जो उन्हों का संघर्ष है, जो उन्हों का समर्पण है, जो उन्हों की कुरबानी है, जो शहादत है, वो असी सारे जानते ही हैं कि साल 1919 जदों जलियांवाले बाग का साका होया सी ते भगत सिंह उदों 12 साल दे सी ते उदों जलियांवाले बाग की मिट्टी अपनी जेब च पा के इस करके लै आए सी कि उन्हां नूं चेता रहे कि गोरी हकूमत दे नाल उन्हां ने संघर्ष करना। असैम्बली दे विच बंब सुट के उन्होंने गोरी हकूमत नूं अपनी आवाज़ सुनाउण की कोशिश की सी। उन्हां दे सिरड़, उन्हां दी बहादुरी, उन्हां दी शहादत, उन्हां दी दलेरी बारे ते असी जानते ही हाँ, पर यह भी असी जानते हाँ कि शहीद आजम भगत सिंह जिन्ने सिरड़ी सन उन्नी ही डूंगी देश दे प्रति, समाज दे प्रति उन्हां दी सोच सी। गोरी हकूमत दे खिलाफ जिन्ने वो बहादुर सन कि गोरी हकूमत दियां अखां च अखां पा के गल करते सन, उस तरह की बहादुरी उन्हां दे अंदर सी समाज के भेदभाव ते समाज दियां कुरीतियां बारे। अज दे सोहणी सवेर प्रोग्राम च भगत सिंह होरां दी सोच, उन्हां दे फलसफे नूं जानने की कोशिश करते हैं। सो जी, अज दे साडे इस प्रोग्राम च प्रोफेसर

बस जी, फिर इस गीत तो बाद लता जी का ऐसा चंगा समा आया कि अज तक उन्हां दे सुर उन्हां दी आवाज समा बन रही है। लता जी की आवाज़ संगीत की पछाण है, भारत की पछाण है। भारत चीन की जंग साल 1962 हुई सी। इस जंग तो बाद 27 जनवरी 1963 दिल्ली के रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम हो रहा सी जिथे लता मंगेशकर जी गा रहे सन। इस प्रोग्राम च उन्होंने ये गीत गाया सी।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
3: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: लोथल में ये जो हेरिटेज

0: कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
1: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
2: मैरिटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
1: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र

0: अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
1: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न ए इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना।

0: अमर उजाला के अनुसार एलएनजी आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, एसआईटी गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Prime Minister Narendra Modi says it demonstrated new example of India's counter-terrorism policy. Proposed 3-day nationwide bank strike which was to begin today, deferred. Government launches project to build national digital public infrastructure for tourism sector. Weather Department forecasts heavy rainfall in Uttarakhand, South Interior, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And in men's cricket, centuries by Virat Kohli and Shubman Gill powered India to an 8-wicket victory over West Indies in first ODI in Thiruvananthapuram. And now the news in detail. India marks the 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28th and 29th in 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month, where 19 Indian soldiers lost their lives. The anniversary highlights a decade of evolved national security measures. In his Mann Ki Baat program on Akashwani yesterday, Prime Minister Narendra Modi described the 2016 surgical strike against terrorist hideouts as a historic milestone. He said the surgical strike highlighted the role of the Indian Army in carrying out the operation across the line of control.
3: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी।
2: The Prime Minister said that India's counter-terrorism approach has continued to evolve over the past decade, citing the Balakot airstrike and Operation Sindoor as examples. Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to activist Ashok Singhal. In an article for an English daily, Mr. Modi said Ashok Singhal's life reflected a cherished ethos. The pursuit of others' welfare acquires far greater meaning than individual achievement. Mr. Modi said that starting from yesterday, the nation marks to celebrate the birth centenary of the outstanding personality of Ashok Singhal. The Prime Minister added that Ashok Singhal worked towards strengthening social unity and equality. He said that Ashok Singhal was blessed with the clarity of thought that there could be no distinction of any kind in society and every individual deserved equal dignity and respect. The Prime Minister said it was his privilege to get

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। भारत वालों पाकिस्तान स्थित दहशतगर्दी टिकाणियां ते सर्जिकल स्ट्राइक की अज 10वीं वरेकंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भारत की दहशतगर्दी विरोधी नीति की एक नवी मिसाल करार दिता। अज तो तजवीजशुदा 3 दिना देशव्यापी बैंक हड़ताल मुलतवी हुई। सरकार ने सैर सपाटा खेतर लिए एक राष्ट्र डिजिटल जनता खाता बनाने एक प्रोजैक्ट शुरू किया। देश अज महान इनकलाबी शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान अज नवी दिल्ली चहाड़ी अभियान 2026 लई 2 दिना राष्ट्रीय खेतीबाड़ी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। भारत ने तिरुवनंतपुरम च पहले एक रोजा अंतरराष्ट्रीय मैच में वैस्टइंडीज नूं 8 विकटां नाल हराया। ते हुण खबरां विस्थार नाल। भारत अज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वरेकंड मना रहा है। 28 ते 29 सितंबर 2016 की रात को फौज ने कंट्रोल रेखा के पार दहशतगर्दी टिकाणे खिलाफ निशानाबद्ध कार्रवाइया की। कार्रवाई 18 सितंबर को उरी दहशतगर्दी हमले तो बाद की गई सी, जिस 18 भारतीय जवान शहीद हो गए सन। इस कार्रवाई ने दहशतगर्दी खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में एक तब्दीली की निशानदेही की। इस तो बाद 2019 बालाकोट से 2025 ऑपरेशन संदूर च पाकिस्तान खिलाफ कार्रवाइया की गई। कल आकाशवाणी से प्रसारित अपने मन की बात प्रोग्राम च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक नूं एक महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिता। उन्होंने कहा कि पिछले दहाके विच दहशतगर्दी विरोधी भारत का नज़रिया बदल गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दहशतगर्दी हमलों के लंबे समय बाद सर्जिकल स्ट्राइक भारत की फैसलाकुन कार्रवाई सी। उन्होंने 2008 विच दिल्ली च हुए लड़ीवार बंब धमाकों और 26/11 के मुंबई दहशतगर्दी हमलों नूं याद किया। श्री मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी खिलाफ भारत की नीति हुण दहशतगर्दी प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त न करन दी है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: आज तो शुरू होने वाली तजवीजशुदा 3 दिना देशव्यापी बैंक हड़ताल रद्द कर दी गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इसकी पुष्टि की थी है। यह फैसला इंडियन बैंक एसोसिएशन नाल हुए समझौते तो बाद लिया गया। इसने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा है कि हड़ताल रद्द करने का फैसला कल रात इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन दरमियान हड़ताल नाल संबंधित मुद्दों उत्ते चर्चा करने लई हुई मीटिंग तो बाद लिया गया। सरकार ने सैर सपाटा खेतर लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल जनतक बुनियादी ढांचा विकसित करने लिए एक प्रोजैक्ट शुरू किया है। यह एक सांझे डिजिटल मंच उत्ते वख-वख सैर सपाटा संबंधित सेवावां ते सहूलतां तक पहुंच प्रदान करेगा।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी महक पंजाब दी। प्रोग्राम च हुणे तुसीं सुनिया फिल्म गुड्डी चोलिया गीत, ते प्रोग्राम दे बाकी गीत तुहानूं सुनवावांगे इस छोटे जे अंतराल तों बाद।
1: कस्टमर केयर किथे है? हाँ मैडम।
2: हाँ जी।
1: केवाईसी अपडेट लई मैनू वार वार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवावां लई
1: कस्टमर केयर किथे है? हाँ मैडम।
2: हाँ जी।
1: केवाईसी अपडेट लई मैनू वार वार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवावां लई निर्धारित समय ते केवाईसी अपडेट करवाना चाहिदा है।
1: पर होवेगा किवें?
2: जेकर पछाण जां पते विच कोई बदलाव नहीं है ता अपने बैंक जां एटीएम जां बिजनेस करस्पोंडेंट यानी बीसी कोल जाके जां बैंक नाल रजिस्टर्ड ईमेल जां मोबाइल नंबर राही जां मोबाइल बैंकिंग ऐप राही जां पत्तर राही उसकी डिक्लेरेशन दियो।
1: अच्छा, ते जेकर कोई बदलाव होंदा है ता
2: फिर पछाण अते पते दा नवीनतम सबूत देके केवाईसी अपडेट करवा सकदे हो।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट करवाउण लई अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कैंप जां बैंक शाखा ते जाओ।
3: आरबीआई कहिंदा है,
2: जानकार बनो, सुचेत रहो।
4: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् वक् चैनल्स से, FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स से। ये नाल नाल अपडेट्स जाणोगे FM रेनबो चैनल से 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
5: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवें प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
4: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
0: अंतराल तो बाद एक बार फिर तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी। प्रोग्राम चल

0: पर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर से।
1: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलिया जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हैड आफ आफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वैबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
2: अंतराल तो बाद एक बार फिर तुहाड़े सारयां दा स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो रहा जी, हैलो फरमाइश। ते प्रोग्राम सुनन वाले सारे स्रोतियां नूं तुहाड़ी होस्ट ते दोस्त देविका दी प्यार भरी नमस्कार। भई दोस्तों, तुहानू सारयां नूं पता है कि इस प्रोग्राम विच तुसी सुनदे हो अपने पसंदीदा हिंदी फिल्मी गीत। ते इस लई करना की है वह भी मैं तुहानू दस दिनी हाँ। भी तुसी चुकना है फोन ते मिलाना है साडा नंबर। जी हाँ, साडा नंबर है 2342-4173। ते जिहड़े कॉलर सानू जलंधर तो बाहरों कॉल करनगे ना, वो जलंधर का एरिया कोड लगाना ना भुलन। जलंधर का एरिया कोड है जी 0181। ते दोस्तों, अज का जिहड़ा साडा प्रोग्राम है ना, अज का साडा प्रोग्राम आधारित है स्वर कोकला लता मंगेशकर दे उत्ते। ते अज दे प्रोग्राम विच तुहानू लता मंगेशकर जी दे गाए हुए गीत सुनवाए जाणगे। सो इंतज़ार किस गल दा, भई चुक लो फोन ते मिलाओ साडा नंबर ते पहुँच जाओ साडे स्टूडियो। ते जद तक साडे को पहले कॉलर पहुँचते ने ना, आओ तुहानू सुनवाने लता मंगेशकर दा गाया फिल्म लम्हे चो लिया एक खूबसूरत गीत।

0: फिल्म अभिमान दे इस गीत तो बाद प्रोग्राम हेलो फरमाइश च अगले कॉलर भी आ पहुंचे ने। आओ जान दे आ कौन आए ने ते कित्थों आए ने। हेलो
1: हेलो सस्त्रीकाल मैडम जी।
0: सस्त्रीकाल जी, कौन बोल रहे ने ते कित्थों बोल रहे ने?
1: मैं जी, मैं राजू बोल रहा जी चंडीगढ़ तो।
0: राजू जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल ने?
1: बहुत वधिया ने, थोड़ा भी स्वागत है जी तुहानू।
0: जी जी शुक्रिया जी। ते राजू जी अज तां प्रोग्राम दे शुरू शुरू च कॉल लग गई है ना? अपनी मर्जी का कोई भी गीत लगा दी है। देखो जी अज साडा जिहड़ा प्रोग्राम है ना लता मंगेशकर जी दे आधारित है, ते तुहानू लता जी दा गाया फिल्म दिल तो पागल है चलिया एक गीत सुनवा रहे हैं लता जी ते उदित नारायण दी आवाज़ां च। उम्मीद है तुहानू ये गीत पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करन लई।
1: धन्यवाद जी।

0: प्रोग्राम हैलो फरमाइश च हुणे तुसी सुन रहे सी फिल्म लेकिन चुलिया गीत ते इस गीत तो बाद अगले कॉलर भी साडा नंबर 2342173 मिला के साडे कोल आ पहुंचे ने आओ जानते हैं कौन आए ने ते कित्थों आए ने हैलो सत श्री अकाल जी कौन बोल रहे ने ते कित्थों बोल रहे ने शुक्रिया जी शुक्रिया
1: बहुत बहुत परमात्मा तरक्की
0: जी जी कौन बोल रहे ने
1: थोड़ी जी बेनती है पूजा
0: सर अपना नाम अपना नाम दस दो सर कौन बोल रहे हो नहीं नहीं कौन सर अपना नाम तो दसो पहले कौन बोल रहे हो कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच तुसी ता प्रोग्राम दी शुरुआत च शिकायतां शुरू करतियां हैं कॉल लगदी पता कॉलर्स दी अक्सर शिकायत हुंदी है सर कॉलर्स दी शिकायत हुंदी है जी साडी कॉल नहीं मिलदी है ना ते तुसी शिकायत करदे पे हो चलो आपां तुहाडी कोई शिकायत नहीं रहन देनी तुसी गाना दसो अज केड़ा सुनना चाहुंदे हो जी जी शुक्रिया गाना गाना जी फिल्म चुपके चुपके चो लो जी आप फरमाइश पूरी करते हैं उम्मीद करते हैं कि जो अगली बारी कॉल करोगे ना तो कोई शिकायत नहीं रहेगी ते तो सारी शिकायत जड़िया ना दूर हो जाएगी हूँ अपना पसंदीदा गीत इंजॉय करो जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए

0: भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियन अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा है कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपने दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैपिंटशिवाली ट्रॉफी बरकरार रखने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों के जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द होने के कारण रैंकिंग के लिहाज से भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज सुबह के सत्र में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 730 अंक गिरकर 73,170 पर और निफ्टी 231 अंक गिरकर 22,909 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM

864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। साढ़े स्रोते न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए ते नाल दे नाल वेव्स ऐप दे जरिए आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे ने। प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी रोजाना दा प्रोग्राम अपने वेले सिर लैके हाजिर तुहाडे सारयां दी अपनी दीपाली वधवा वल्लों प्यार भरी मुस्कुराहट भरी नमस्कार अदाब ते सत श्री अकाल।

प्रोग्राम धमक जलंधर पैंती और बड़ा ही खूबसूरत गीत असी सारिया ने सुन लिया। हुण तुहाडी फरमाइशां दी वारी, हुण उडीक हो रही होएगी कि सारिया नालों पहला बाजी किन्ने मारी। लो फिर नाम दस दिंदे हां, VPO मिड्डूखेड़ा डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहब तो कृष्ण कुमार, राम प्रताप, ज्योति, सुमन ते मनीषा, इन्हां लई ताड़ियां। और अगला सुनेहा साढ़े कोल पहुंचिया कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखिंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना ते गुरवंश सिंह जौड़ा दा, पिंड लूना म्याना तहसील पायल डिस्ट्रिक्ट लुधियाना तो दर्शन सिंह, अवतार सिंह, जबरजंग सिंह चीमा, मेहताब वीर सिंह रायपुर और इन्हों का सारा परिवार पूरे वेले सिर पहुँच गया जी। और अगले सुनेहे दे नाल मेन बाजार हठूर तहसील जगराओं जिला लुधियाना तो इकबाल सिंह हठूर, रजिंदर कौर इंजीनियर, अमनदीप सिंह, सिमरजीत कौर हठूर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि सारियां नूं इंतजार हो रहा हुंदा भी शायद साडा ही पहला सुनेहा जिहड़ा है वो आकाशवाणी दे वेड़े गया है। हमेशा अलग अलग नाम जिहड़े ने वो असी बोलदे हां और कई वार हुंदा कि किसी स्रोते दा फिर द्वारा तो पहला जिहड़ा सुनेहा है वो पहुँच जाता है। अगले सुनेहे दे नाल पिंड शाहपुर महतपुर तो बूटा सिंह, विजयपाल सिंह, अजयपाल सिंह, पाहुलजोत सिंह, अनाहत कौर, लवप्रीत कौर, परविंदर कौर, हरप्रीत कौर ते गगनदीप सिंह, पिंड नथाणा बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, इन्हां दा सुनेहा मिल गया। हरीश सहगल खन्ना तो जगदीश सहगल, राज सहगल, पूजा पार्थ और सारा इन्हां दा परिवार सहगल परिवार, पिंड साबुआना फाजिलका तो करण कंबोज, चरण रियांश, मानव अनुरीत कंबोज ते परीश कंबोज। अगली फरमाइश दे नाल साढ़े तक सुनेहा भेज रहे स्रोते श्री फतेहगढ़ साहब तो रामनाथ हतापुर, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर, शुक्रिया बहुत बहुत। और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुंचाया रावर करनाल तो ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और तमक जलंधर पेंदी दा हिस्सा बन गए ने जी। पंचकुला तो वेद प्रकाश, प्रजापति, लक्ष्य, एंजल, नेहा, अंजलि, शुभम ते लवली, बड़े ही लवली लवली नाम भेजे तुसी। मक्खू तो बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी और मनीष बजाज, पदमपुर तो भगवान दास तनेजा, पवन कुमार, योगेश तनेजा, आस्था तनेजा, मोहित मक्कड़, मुखीराम जी ते पूजा, रम्मी हैबोवाल अपने पूरे परिवार दे नाल हैबोवाल कला हलका उत्तरी जिला लुधियाना तो इन्हां ने सुनेहा भेजा हमेशा की तरह। पिंड वड़ींखेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहब तो भोला सिंह सिद्धू, भूरा सिंह गहलोत, वकील सिंह चाहल, पिंड संतपुरा राजस्थान तो टेक सिंह सिद्धू, पिंड लैपो गैरी तो गुरमीत सिंह, पिंड बजीतपुर भोमा तो बलजीत सिंह, लो भी पालो सारे भंगड़े सारिया के नाम बोलते असी। हरजीत कैंत मौजी कलोनी डाबा लुधियाना तो इन्होंने सुनेहा भेजा जी। और अगले सुनेहे दे नाल सुभाष शर्मा, सुदेश शर्मा, निशांत, अनुराधा, निवान, निया शर्मा, ए ऊना तो हिमाचल प्रदेश तो अपनी हाजरी लवाई है। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो, वरिंदर शर्मा, कमलेश शर्मा, दीक्षा शर्मा, रॉबिन और व्यांश शर्मा, धर्मकोट डिस्ट्रिक्ट मोगा तो इन्होंने साढ़े तक फरमाइश भेजी है। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया तो ओम प्रकाश राय, श्रीमती ऊषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर तो, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी ते प्रांजल राय, थोड़े सारे दी

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् वक् चैनल्स से, FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स से। ये नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल से 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडों की पल पल की खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर से।
3: ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।
4: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलियां जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वैबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 7 अक्टूबर 2026।

0: भी है। ध्यान रहे, ये कोई नियमित रोजगार नहीं है।
1: एक बार फिर तो निघा स्वागत सारे ही श्रोतियां दा प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी च। लो जी, नाम शामिल करन जा रही हां। बाघा पुराना तो साडे कोल सुनेहा आया जी, सतनाम सिंह रखरा, अमरजीत कौर रखरा, पोतरा तेग फतेह सिंह और पोतरी जसगुन रखरा। क्या ही बाता ने जी, भंगड़े पा रहे ने बच्चे और बड़ी खुशी हुई जी तुहाडा सुनेहा पढ़ के। अगला सुनेहा साडे तक पहुंचाया श्री सुधाकर, राधे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव और जग्गूताई राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित, प्रथमेश सरवत, प्रणाली सानवी और कल्पना देशमुख। इन्होंने सानू सुनेहा भेजिया जी मुकाम पोस्ट कालेगाम जाफराबाद तो, और सारा ही जाधे परिवार देशमुख वायाल परिवार भी इन्हों दे नाल शामिल है। और बड़ा अच्छा लगा जी तुहाडा सुनेहा मिलिया सानू। और अगले सुनेहे दे नाल साडे तक सतनाम सिंह गिल ए पहुंचे जी पिंड पक्खी खुरद डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट तो, पिंड चंदवाजा फरीदकोट तो, अंग्रेज सिंह गेजा, गुरमीत कौर, जगप्रीत सिंह, मनप्रीत कौर, करमजीत सिंह, चरणजीत कौर, पोतियां नवकीरत, गुरसीरत, पोता गुरप्रताप सिंह, सारा ही पूर्वा परिवार पा रहा जी भंगड़े, क्योंकि नाम सब दे शामिल हो चुके ने। अगले सुनेहे दे नाल साढ़े तक हाजिर ने जी अर्शदीप सुखजीत सुरजीत सिंह अमरकोट तो, और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुंचा भोपालगढ़ राजस्थान तो, धर्मेंद्र छिंपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार दा। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। और अगला सुनेहा साढ़े तक आया जी गमहरिया जमशेदपुर तो, रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबुरी बाजार चंदौली तो, विजय सरोज, रामनगर कदमा जमशेदपुर तो, मुराहू जायसवाल, देवंती चकिया बाजार चंदौली तो, सुंदर जायसवाल ते सुमन। और गांव चगुड़ी जिला यमुनानगर तो रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन ते मनराज। और अगले सुनेहे दे नाल शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र तो, संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या ते सविता भाकरे। और ग्राम बगबुड़वा पत्थरिया तो नरेन नेताम, कुसम नेताम, मैस गेट नाभा तो भी साढ़े तक सुनेहा भेज दिता जी। नाम सोमदत्त, कैरव ज्योति, राणी गुरमन्नत, शुक्रिया जी। अगले सुनेहे दे नाल मोहम्मद बुरहाउद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा आजमीन गुड़िया। और नमस्कार, सानू कौन भेज रहा जी, गोवर्धन बिहारी कलोनी दिल्ली तो, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य और मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ तो राहुल खुराना, रचिता और केशु रिधान खुराना, लेवाई छत्तीसगढ़ तो गुलाबदास मानकपुरी ते राजादास मानकपुरी, करणवीर हाउस पुचो कैंचियां बठिंडा पंजाब तो, प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू एकम, दमन ते अभिजोत, गुरदीप सिंह कटवाल, मीतोबाई, सुखचैन राणो, परवीन, नवीन, अनमोल, बूटा, मनीता, नवदीप, खुशदीप, निर्मल, परमजीत, गुरसेवक, गुरबख्श, साहिबा, मिर्जा। इन्होंने भेजिया कितों है, यह भी सुन लो, करनी खेड़ा फाजिलका पंजाब तो। अगले सुनेहे दे नाल साढ़े तक जिन्हां दे नाम असी शामिल कर रहे हैं, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश तो, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर, और राकेश, नरेश, जगदीश, बलदेव, प्रेमी ए पहुंचे जी जंडवाला चढ़त सिंह तो। अगले सुनेहे दे नाल दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड तो, मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन, बाबू अहद, मिर्फा नाज, बेबी चाहत। रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान तो जगमाल सिंह डागला है।

पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक ते सारा ही डागला परिवार, मोहम्मद सैयद अबासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अबासी ते अब्बासी परिवार दे सारे सदस्य इन्हां ने सानू सुनेहा कित्थों भेजा है जानते हो? ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर तो। और अगले सुनेहे दे नाल पिंड इस्लामवाला डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो सोन लाल राठी, ओम प्रकाश, शगुन राठी, लवकुश वर्मा, शतरपाल सिंह, रजिंदर सिंह, बाबू सिंह और काका पट्टी पिंड कमालवाला तो गुरमेज सिंह विरक। मेन बाजार शेरपुर थाना जिला संगरूर तो मिंटू सप्पल, प्रभजोत ते मनजोत सप्पल। और अगला नाम इन्होंने जेडे भेजे ने जी वह भी मेन बाजार शेरपुर जिला संगरूर तो, कमलजीत कौर, अजीत कौर ते अमनदीप कौर, इन्हों के भी नाम शामिल किए गए ने जी। नलेशो नगर नरवेल महाराष्ट्र तो पी एस नहावकर, निर्मला विशाल मलकापुर तो, नारायण इंगले, सोपान आशीष मुहेरकर। अगले सुनेहे दे नाल साडे कोल पांडर कवड़ा जिला यवतमाल तो अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री और धनश्री बुरांडे। तुहाडे सारयां दी रली मिली पसंद है जी मोहन मस्ताना दी आवाज़ च गीत सुनन दी, ते लो फिर पहले गीत सुन लो।

जैन, मट्टू जैन, दीपक जैन, गौतम जैन, राजेश अरुणा, टीटू जैन, के गोपाल शर्मा, जे बी राव, और यूएसए तो बुलबुल राव, ए भी यूएसए तो ने, और अजित ओ कहंदे जी चाहे यूएसए तो ने पर कह रहे ने जी इंडिया जिंदाबाद ते आकाशवाणी जिंदाबाद। ये तो तुहाडा प्यार बोलता है आकाशवाणी दे नाल, और इस तरह तुहाडा प्यार हमेशा आकाशवाणी जलंधर नूं मिलता रहे। अगला सुनेहा जगदीश मठाड़ू वीरपाल ते गुरबख्श मठाड़ू दा, इन्हां ने साढ़े तक सुनेहा भेजिया जी मोगा तो। पिंड चतरा तहसील जीरा फिरोजपुर तो जगजीत सिंह चतरा, प्रेम भूषण गुप्ता, गुरबख्श सिंह तलवंडी, जल्ले खां टहल सिंह चतरा, गुरचैन सुखचैन, कुलदीप सिंह, बेअंत सिंह, हरनेक सिंह, बूटा सिंह, जीत सिंह सहोता, अजीत सिंह पैंच ते लिखारी सभा दे सारे मैंबर साहिबान, इन्हां ने भी मैसेज अपना भेज दिता है। तुहाड़े सारिआं दी पसंद ते पेश करन जा रही हाँ जी। सतिंदर सरताज की आवाज़ सुनने लिए तुसी यो बहुत बेचैन, ते तुहाड़ी बेचैनी कर दिंदे आ खत्म। आओ फिर रल मिल के सुनते हैं खूबसूरत गीत।

0: भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी।

0: तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधा तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर पर्यटन से जुड़ी सेवाओं और जानकारी के लिए एक साझा डिजिटल व्यवस्था, नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना गाप्रदाश्वली ट्रॉफी जीतने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों के जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान में आयोजित एशियाई खेलों 2026 में भारत की ईशा सिंह ने आज आईची नागोया में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने आईची नागोया में महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की लिम गरम को हराया। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था। गत चैंपियन भारत को ICC T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर होने के कारण सेमीफाइनल में जगह मिली है। सेमीफाइनल का मुकाबला भारत और नेपाल, कृपया दोबारा सुने, सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वस्ते विड़े।

0: तुसी बहुत ही कह लो कि सबर संतोख ते हसमुख चेहरे वाले हो, जेडे कि हॉल सारे चीजा इन्हां दियां हस के मान लेंदे हो। वैसे निशान सिंह जी भी बहुत हसमुख लग रहे
1: नहीं
0: ने।
1: पर मैडम किदा इन्हां नूं ना भी इन्हां नूं कहवा नहीं मैं नहीं बना के देना,
0: जी
1: सारी उम्र गुजार ली है। मैं तो कहनी और डमांडा करया करो, जिन्ने जोगी आ गईया करया
0: बिल्कुल।
1: करांगी।
0: अच्छा, कदी कदी कोई गीत भी गुनगुनाया तुसी? क्योंकि मैं जितों तक सुनिया, जितों तक कि आर्मी दे विच सारियां लेडीज जिहड़ियां ने गाने गीत भी गांदियां ने,
1: हां जी
0: ते कदी
1: गांदिया,
0: कोई गीत गुनगुनाया इन्हां वास्ते?
1: हां जी
0: केड़ा
1: गांदिया।
0: गीत गाया फिर सुनाओ जरा, सुनाओ सुनाओ अज सुरिंदर कौर जी।
1: जवे ना ये चले गए ना, पोस्टिंग चले गए,
0: हां जी
1: ते उत्थे इवें मेरा सिलाई दा काम सी, ते सिलाई करन डई, ते उत्थे मेरे कोल ना चार पांच लेडीज सारे बैठ गईयां।
0: अच्छा
1: कहिंदे साहब इत्थे नहीं हैगे, ते चलो अज गाना गाने हैं।
0: अच्छा
1: ते मैं क्या नहीं मैनू नहीं आंदा हैगा।
0: जी
1: कहिंदे नहीं नहीं चलो गाने हैं, मैनू भी नहीं आंदा, इवें माड़ा मोटा गा लैने हैं।
0: जी
1: ते कहिंदे चलो शुरू करिए, तो शुरू किया। गड्डी चलदी तारां
0: जी जी
1: ते, अगे माया नित मिलदा, हुन मिलदा करारां
0: जी
1: ते।
0: अगे माया नित मिलदा हुण मिलदा करारां ते। बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। ते तुसी इस तरह भी अपना टाइम पास
1: हाँ
0: कीता
1: जी,
0: है,
1: ऐदा भी
0: ते
1: किया।
0: तुसी भी कदी निशान सिंह जी इन्हां नूं मिस कीता जदों तुसी आर्मी च इन्हां ने क्या पोस्टिंग ते गए हुए सी, इन्हां ने तां मिस कीता। तुसी भी कदी कोई गाना गाया इन्हां वास्ते?
1: नहीं गाना तो नहीं कभी गाया जी इन्हें
0: अच्छा
1: वास्ते,
0: कदी कोई
1: मौका नहीं इन्ना मिला जी। तकरीबन इकट्ठे रहे हैं, ज्यादा लंबाई दूर रहने का मौका नहीं मिला।
0: अच्छा अच्छा अच्छा कभी भी
1: नहीं
0: ऐदा दा मौका ही नहीं मिला।
1: इदा
0: कभी
1: कभी
0: कोई
1: नहीं,
0: दो लाइनां भी इन्हां वास्ते जिहड़ियां ने
1: नहीं
0: ओ
1: नहीं
0: नहीं
1: कभी नहीं,
0: गाईयां?
1: कभी नहीं।
0: नहीं, वैसे गीत गाना कोई पसंद है? कोई पंजाबी गीत पसंद है?
1: नहीं पसंद है कोई नहीं गाना
0: अच्छा जी।
1: मैडम। इन्ना
0: अच्छा,
1: शौक
0: कोई
1: नहीं गाने का, नहीं
0: इन्ना
1: नहीं
0: सुन
1: तुहानूं
0: दा भी शौक
1: ओ
0: नहीं, गाने का भी
1: मेरी शौक गल
0: नहीं।
1: सुनो, ओ तुहानूं शौक ते हैगा दिलजीत सिंह दा।
0: जी देखो पता लग गया जी। कोई इस तरह की आर्मी की अभुल याद जड़ी तुसी आज साड़े नाल सांझी करना चाहते हो, क्योंकि आर्मी दे विच बहुत देर तुसी नौकरी की और बहुत सारी थावां ते तुसी रहे भी हो, ते इस तरह की कोई अभुल याद?
1: आर्मी दे विच रह के एक गल मैनू या बार बार याद आती है कि गंगानगर मैं पोस्टड सी,
0: जी
1: ते उत्थों मेरी पोस्टिंग पटियाला हो गई जी। ते पटियाला जदों मैं पहुंचा ते अगर 6 महीने भी नहीं सी होए,
0: जी
1: ते कहिंदे जे तलो तुहाडी पोस्टिंग हुण अहमदनगर दी हो गई
0: अच्छा।
1: महाराष्ट्र दी। ते ओह मैनू अज तक भी याद आंदा कि मेरी मैरिज सी भांजी दी,
0: अच्छा
1: ते ओह भी मैं अटेंड नहीं कर सकया, और मैं गड्डी दे विच सी जदों शादी उहनां दी होई। तो वो अज तक भी मैनू साड़ी सिस्टर जिहड़े ने उलामा दिंदे कि तुसी
0: पर
1: भांजी
0: देखो
1: दे
0: जी,
1: शादी नहीं।
0: क्योंकि तुसी इस तरह दी पोस्टिंग ते सिगे जिथे तुसी मना ही नहीं कर सकदे, जाना ही पैंदा सानू, है ना
1: जदों ब्यास अपनी पोस्टर मेरी लास्ट पोस्टिंग हुई वलंटरी
0: जी।
1: बेस ते मैं ली है जी, उत्थे क्वार्टर दे विच जिस दिन मेरा साड़ी मैरिज एनिवर्सरी सी 28 जनवरी जिदा हुंदी है, ते सानू पता नहीं सी, असी ये साडे बच्चा ने तिन्हां ने ना रल के
0: अच्छा
1: अपना अरेंजमेंट किया सी। ते असी
0: जी।
1: जदों बाजारों समान लैके आए शाम नू, ते अगे
0: हाँ
1: केक रखे सी नाले
0: अच्छा।
1: सोने दी रिंग्स ते चैनी वगैरह साडे
0: जी
1: वास्ते अपने
0: जी
1: बचत विचों करके, ते सानू उन्होंने मैं इन्हां दी चानी पाई और इन्होंने मैनू रिंग फिर पाया। वो पच्ची
0: अच्छा।
1: 25th एनिवर्सरी सी मैरिज
0: हाँ जी, हाँ
1: एनिवर्सरी
0: जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लम्हे होणगे ओ वाले जिहड़े
1: साडी।
0: तुसी उस पल नूं बिताए होणगे।
1: हाँ जी हाँ जी
0: अज बहुत सारियां जिहड़ियां भैणां ने ओह साडा ये प्रोग्राम सुन रहियां ने, ते साडे वीर भी जिहड़े ने घर बैठे प्रोग्राम सुन रहे ने, ओह चाहुंदे होणगे कि तुसी एक दूजे दे साहीं जी रहे हो, एक दूजे दे नाल इन्ने वरे हो गए ने इकट्ठे रह रहे हो। की कहना चाहोगे उन्हां जोड़ियां नूं कि व्याहता जीवन दा, सफल जीवन दा गुरमंत्र की है? निशान सिंह जी।
1: मैं तो यही कहांगा कि जे शादी कीती है तो उन्होंने जिंदगी भर निभाओ, तो सबनों मैं इस अपने स्रोतियों भी यही कहांगा कि कृपा करके जीवन साथी ऐसा लभो जो तुहाडे साथ नाल साथ देवे,
0: जी
1: ते हर काम एक दूजे की मर्जी ना करो, ताकि तुहाडा जीवन जरा नेक्स्ट जीवन सफल रहे।
0: बहुत वधिया गल निशान सिंह जी तुसी दसी कि ये सफल जीवन जड़ा है व्योता, इनू सफल करन वास्ते सानू जरूरी है कि एक दूजे दी गल मननी, एक दूजे दा कहना मनना, और ये नहीं सोचना चाहिदा कि मैनू बहुत उच्चा कर लेना है।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਰੋੜਾ। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक

0: भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान

निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। इसमें 60 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 25 करोड़ लोगों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वास्थ्य सुरक्षा, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज और किसानों तथा महिलाओं को वित्तीय सहायता शामिल है। वे नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली NCR क्षेत्र में चलती बस में एक नाबालिग के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म का आज स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे मामले कानूनी व्यवस्था की विफलता को उजागर करते हैं। न्यायालय ने कहा कि अपर्याप्त रोशनी, खराब निगरानी और अन्य आवश्यक प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव के कारण सार्वजनिक स्थानों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बनने नहीं दिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर व्यक्ति से व्यापारी UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है। 2000 रुपए से अधिक के UPI भुगतान पर MDR लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये मामला कानूनी से अधिक तकनीकी है। जापान में एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियांग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। एशियाई खेलों में भारत 4 स्वर्ण सहित कुल 39 पदकों के साथ तालिका में 12वें स्थान पर है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 945 अंक गिरकर 72,952 पर और निफ्टी 299 अंक लुढ़क कर 22,842 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
1: HIV
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानण लई सुणो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तों 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तों 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् वक् चैनल्स से, FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स से। ये नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल से 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां की पल पल की खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर से।
3: ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਤ 8:30 ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।
4: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो निघा स्वागत प्रोग्राम फौजी वीरां लई। फौजी वीरो प्रोग्राम च गीत तुहाडे नज़र कर रहे हैं बर्फी फिल्म चो लिया, आवाज़ स्वानंद किरकिरे दी, संगीतकार ने प्रीतम ते गीतकार ने स्वानंद किरकिरे।

0: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलिया जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हैड आफ आफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर है। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वैबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
1: फौजी वीरो, प्रोग्राम च पद्मावत फिल्म दा गीत तुहाड़े नज़र कर रही हां, आवाज़ नीति मोहन दी, गीतकार सिद्धार्थ गरिमा ते संगीतकार ने संजय लीला भंसाली।

0: अकाउंट में प्रति महीने कोई ना कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा। तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
1: उन्होंने सारे हितधारकों 2047 तक विकसित भारत के टीचे हासिल करने मिल के काम करने का सद्दा दिता। देश अज महान इनकलाबी शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जन्म वरेगंढ मना रहा है। 1907 अज के ही दिन भगत सिंह का जन्म आण वंडे पंजाब के लायलपुर जिले के पिंड बंगा च श्रीमती विद्यावती और श्री कृष्ण सिंह के घर होया। भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार च होया सी अते ओ सत्त भैन भरावां विच दूजे स्थान ते सन। उन्हां नूं प्यार नाल भागां वाला कहा जांदा सी। उन्हां ने राजगुरु जी अते सुखदेव जी दे नाल देश लई अपनी कुरबानी दे के अपने इस प्यार दे नां नूं सार्थक करता। उन्हां दा जन्मदिन मनाउण लई अज दोपहर बाद लुधियाणा च पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी च जश्न ए इनकलाब नां दा सूबा पद्धरी सभ्याचारक प्रोग्राम करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज आज़ादी घुलाटिए शहीद भगत सिंह नूं उन्हां दी जन्म वरेगंढ उत्ते श्रद्धांजलि भेट की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भगत सिंह ने अदुत्ती हिम्मत और बहादुरी नाल आज़ादी अंदोलन च नवी ऊर्जा का संचार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी शहीद भगत सिंह नूं श्रद्धांजलि भेट की है। फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेसनल यूनीवर्सिटी LPU च करीब 24 घंटिया तक चले तनाव तो बाद पंजाब पुलिस ने देर रात स्थिति ते काबू पा लिया है। रोस मुजहरा कर रहे विद्यार्थियों हाईवे ते हटाए जाने मगरों आवाजाई भी सुचारू हो गई है। विद्यार्थी कुछ दिन पहला यूनीवर्सिटी कैंपस में एक विद्यार्थन नाल कथित जबरदना की घटना संबंधी यूनीवर्सिटी प्रबंधकों वालों कार्रवाई न किए जाने के विरोध में रोस मुजहरा कर रहे सन। इस दौरान कैंपस में भनतोड़ की गई, पुलिस मुलाजमान से पथराव होया, पुलिस की गड्डियों भी नुकसान पहुंचाने के नाल नाल वाहनों अग लाई गई सी। इस संबंध में पंजाब पुलिस के मुखी श्री गौरव यादव ने दसिया कि
2: एक गल होर कहना चाहांगा कि यह जी सा FIR दर्ज हुई है, साड़ी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सो हूएवर इज इन्वॉल्व इन द इंसीडेंट रिलेटेड टू स्टूडेंट्स उन्होंने खिलाफ एज पर लॉ एक्शन लिया जाऊगा। कोई वड्डे तो वड्डा बंदा भी हैगा, वो भावे यूनिवर्सिटी प्रशासन तो है भावे कोई बंदा हैगा, वी विल इन्वेस्टिगेट इट इन अ प्रोफेशनल मैनर, थोनू सारा कुछ दसांगे।
1: जापान विच एशियाई खेडों च भारत की ईशा सिंह ने महिलावां दे 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत मुकाबले च चांदी का तमगा जितया है। पिंकी बलहारा ने औरतों के अंडर 78 किलोग्राम भार वर्ग के कुराश मुकाबले विच कांसी का तमगा हासिल किया है। भारत की मर्दों की क्रिकेट टीम एशियाई खेडों के सैमीफाइनल च पहुँच गई है। एक बार खास खबर फिर सुन लो। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपए तो वध दे व्यक्ति तो व्यापारी UPI लेन देन उत्ते मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लाने दे केंद्र सरकार दे फैसले उत्ते रोक लाने तो इनकार कर दिता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा च विश्व आगुआ ने सिक्ख्या हुनर तकनालोजी अते रुजगार राही आलमी खुशहाली लियाउण लई वध रही नौजवान आबादी की समर्था ते जोर दिता है। एशियाई खेडां च भारत की ईशा सिंह ने औरतों के 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत मुकाबले चांदी का तमगा जितया। ये नाल ही साडा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक खबरों का बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सुप्रीम कोर्ट ने UPI लेनदेन पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिज करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स को आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। आज मुजाहिद आजादी शहीद भगत सिंह को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। खाम तेल की कीमतों में उछाल के तनाजुर में सेंसेक्स में तकरीबन 1000 पॉइंट्स की गिरावट आई है। निफ्टी भी 299 पॉइंट नीचे आ गया। और जापान में जारी एशियाई खेलों में आज खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले और अंडर 78 कुराश मुकाबले में भारत ने चांदी और कांसे के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपए से ज्यादा के पर्सन टू मर्चेंट यानी बाज UPI लेन देन पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट

0: अमाउंट रेट नाफिज करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इन चार्जेस का इतलाक अगले महीने की 15 तारीख से होना है। 2000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई अदायगी पर एमडीआर नाफिज किए जाने को चैलेंज करने से मुतालिक एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत आलिया ने कहा कि मामला कानूनी एतबार से कम लेकिन तकनीकी लिहाज से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और दीगर मुतालिका फरीकों को हिदायत दी है कि वह 4 हफ्ते के अंदर अंदर अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करें। बैंक यूनियनों के यूनाइटेड फोरम ने ऐलान किया है कि बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज से शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। भारतीय बैंकों की एसोसिएशन आईबीए के साथ समझौता होने के बाद इस सिलसिले में फैसला किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर ऑल इंडिया बैंक मुलाजमीन एसोसिएशन ने कहा है कि यह फैसला कल रात भारतीय बैंकों की एसोसिएशन और 7 बैंक यूनियनों के मुत्तहदा फोरम के दरमियान हड़ताल से मुतालिक मामलात पर मीटिंग के बाद किया गया। इससे कबल बैंक यूनियनों के मुत्तहदा फोरम और सरकारी मिल्कियत के बैंकों की बाज दीगर यूनियनों और अंजुमनों ने 28 से 30 सितंबर तक पूरे मुल्क में 3 दिन की हड़ताल का नारा दिया था। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स को आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं, जिससे दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निमटने की नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी की एक नई मिसाल कायम हुई थी। साल 2016 में 28 और 29 सितंबर को भारतीय फौज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में कंट्रोल लाइन के उस पार दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स को निशाना बनाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स की थीं। उरी में दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में बराह रास्त और फैसलाकुन फौजी कार्रवाई के तहत यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। उरी के हमले में 19 भारतीय फौजियों की जान गई थी। कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को एक तारीखी संगमील करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से कंट्रोल लाइन के उस पार कार्रवाई अंजाम देने में भारतीय फौज का रोल उजागर हुआ।
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था।
0: मेहनत और रोजगार के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि मुल्क के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को समाजी तहफ्फुज के दायरे में लाया गया है। इनमें 60 करोड़ से ज्यादा शहरियों के लिए 5 लाख रुपए का सेहत से मुतालिक कवरेज, 25 करोड़ अफराद के लिए ईएसआईसी के तहत सेहत की देखभाल की यकीनी फराहमी, 80 करोड़ से ज्यादा अफराद को मुफ्त अनाज और किसानों खवातीन को माली मदद शामिल है। वजीर मौसूफ नई दिल्ली में सनती राबतों और लेबर और अवार्ड से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे।
2: हम 25 करोड़ लोगों को एसआईसी की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे है जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसे अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में एक चलती बस में एक नाबालिग लड़की की मुबैना इज्तिमाई आबरूरेजी का ये कहते हुए अपने तौर पर नोटिस लिया है कि इस तरह के वाकयात से कानून नाफिज करने वाले हुक्काम की नाकामी उजागर होती है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि नाकाफी रोशनी, खराब निगरानी और दीगर जरूरी इंतजामी सहूलियात के फुकदान की वजह से पार्कों और बसों समेत अवामी मकामात को बड़े खतरे वाले जोन नहीं बनने दिया जा सकता। गुज़श्ता महीने 16 साल की एक लड़की ग्रेटर नोएडा में एक स्लीपर बस में सवार हुई थी जिसकी बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने मुबैना आबरूरेजी की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गंगटोक, सिक्किम और लोहगोम्पा त्वांग अरुणाचल प्रदेश से तलबा के ग्रुपों ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये तलबा कौमी यकजहती टूर के हिस्से के तौर पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। मुल्क आज अजीम इनकलाब पसंद शहीद आजम भगत सिंह का 119वां यौम पैदाइश मना रहा है। आज ही के दिन 1907 में भगत सिंह पंजाब के लाल

0: एचआईवी किमें फैलदा है?
1: एचआईवी
0: नहीं पता ना, समझदार वीरे ता सुन, एचआईवी किमें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। फौजी वीरों, खबरां तो बाद फिर हाजिर होए हैं तुहाडे मनोरंजन लई कुछ होर फिल्मी गीतां दे नाल। लो सुनो सुल्तान फिल्म दा गीत, आवाज़ राहत फतेह अली खान दी, गीतकार ने इरशाद कामिल ते संगीतकार ने विशाल शेखर।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल N. वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ

0: और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई। खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि 3 तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बबदलाव लाने में मदद कर रहा है।
4: 3 तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
5: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी

0: एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
1: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि तीन तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
1: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो तीन तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थीं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
5: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहां आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
4: सावित्री फूले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
6: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
4: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
7: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
8: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।

0: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़ककर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हरा कर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानन लई सुनो जापान च हो रहीयां एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तों 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तों 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक वक चैनल्स दे FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स दे। इदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तों 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
3: ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਤ 8:30 ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलों जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला।

0: रंगत ऐसी चढ़ गई सी छेती छेती।
1: सुपने करे सकार ने बने इनकलाबी, किशन सिंह कर जन्मे एक वीर पंजाबी।
0: अर्जन सिंह सुनाम दा नित वीर कहानी, बचपन जंदा।

एक बार फिर तो स्वागत जी प्रोग्राम दे विच और प्रोग्राम थोड़ा अपना चिट्ठियां मिठियां इस वेले चल रहा है और इस प्रोग्राम दे लई तुसी सानू खत लिखदे हो हर रोज़ 3 बजे तो लैके 4 बजे तक। इस प्रोग्राम नू असी तुहाडे वास्ते लैके आउंदे आ AIR दी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र और इस वेले गुरदास मान हुणां दे गाए गीत की फरमाइश साडे तक पहुंची है। बहुत सारे दोस्तों ने चिट्ठी लिखी है कि गुरदास मान की आवाज़ दे विच गीत सानू सुना दिता जाए और ये दोस्त जो इस वेले सानू चिट्ठियां भेज रहे ने जिन्होंने चिट्ठी भेजी है जी उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। और चिट्ठी शामिल करदे आ मुहम्मद पुरसोत्र ढाणी रतिया तो, जीवन सिंह बूक, शंटी बूक, सिमरन बूक, कौशल्या रानी, गुरशिंदर बूक, बब्बू बूक, कुलदीप, कीरत भूषण खेड़ा, जशन और पूरा बूक परिवार जिन्होंने सानू चिट्ठी भेजी है जी। गुरदास मान उन्हां दी आवाज़ विच कहिंदे सानू गीत सुना दिता जाए, जरूर सुनावांगे जी। पंचकूला सैक्टर 9 तो आशु चुग शिवानी चुग गोविंद टोनी लव और इन्होंने सानू कहा है कि सानू गुरदास मान दी आवाज़ विच गीत सुना दिता जाए, जरूर सुनावांगे जी। प्रोग्राम दे नाल इस तरह जुड़े रहना। और बुरज सिद्धमा मलोर तो सरबजोत सिद्धू, अविताज सिद्धू, जगतार जग्गा तौला किंगरा तो, मलोर तो जगतार गिल, परमजीत कौर गिल, गैवी गिल, अमन गिल उन्होंने सानू चिट्ठी भेजी है जी। रफ़ी की आवाज़ के कहिंदे पंजाबी गीत असी सुना चुके हैं जी, तुसी रफ़ी जी और दिलराज कौर उन्होंने आवाज़ के जरूर ये पंजाबी गीत जिहड़ा सुनिया होएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैं चिट्ठी भेजने के लिए। पिंड आजमवाला

तहसील फाजिलका सोन सिंह बोक निशान सिंह सीरत कौर कीरत कौर दादी जसवंत कौर राजमिस्त्री पिंड मारूवाल बोदला ढाई नेड़े थाना अरनी वाला सुरिंदर कौर बूक बलविंदर कौर बलदेव सिंह चक कंदेशा पंडित अमर लाल पोस्टमैन उन्होंने सानू ये चिट्ठी लिखी है और कहिंदे कि सानू मेहर मित्तल दी पंजाबी फिल्म का गीत सुना दियो जरूर जी मैं जरूर कोशिश करूँगी कि जिहड़ा गीत तुसी लिखिया मेहर मित्तल साहब की फिल्म का जरूर असी तुहाडे वास्ते प्ले करांगे चकला बाजार समाणा तो पप्पू राजा खुशदिल संगीता जिंदल हसमुख जिंदल उन्होंने सानू चिट्ठी भेजी है कोई भी पंजाबी गीत सुना दिओ सानू कहिंदे जरूर जी बहुत बहुत शुक्रिया और मखू तो बिल्ला बजाज हैप्पी कपूर फिरोजपुरी मनीष बजाज उन्होंने सानू चिट्ठी लिखी है और प्रोग्राम पेशकर्ता नमस्कार भेजी है तुहानू भी बहुत बहुत नमस्कार जी कोई भी गीत कहिंदे सुना दिओ कन्वर अर गरेवाल की आवाज़ के जरूर जी जरूर सुनावांगे प्रोग्राम के नाल इस तरह जुड़े रहना और इस तों इलावा हरदीप सिंह जगबीर सिंह ज्वाला सिंह धर्मवीर झोरड गुरसाहिब सिंह चहल और पिंड राजपुरा और तहसील अबोहर जिला फाजिलका तो चिट्ठी लिखी है पूरी पंचायत वालों कहिंदे प्यार भरी सत श्री अकाल आकाशवाणी के पूरे परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया जी तुहानू भी सत श्री अकाल जिला फाजिलका तहसील अबोहर पिंड राजपुरा तो ये चिट्ठी आई है गीत इन्होंने नहीं लिखिया पर आप चिट्ठी इन्होंने जरूर शामिल कर लिए गीत भी लिखिया करो जी बहुत चंगा लगा कि तुसी इकट्ठे बैठ के प्रोग्राम नूं सुनदे हो बहुत बहुत शुक्रिया पिंड कुड़ियाणा फाजिलका दो त्रिलोक सिंह सुखना दोती शिवजोत सिंह समूह परिवार जिहड़ा है सानू चिट्ठी भेज रहा है दोस्त बलतेज कुड़ियाणा भोला सवाग उन्होंने चिट्ठी भेजी है जी गीत कोई नहीं लिखिया इन्होंने सो गीत भी जरूर लिखिया करो जी बहुत चंगा लगता सानू जो तुसी चिट्ठी पाउंदे हो और पूरे परिवार दे नाल दोस्तों दे नाल कुछ दोस्त पूरी पंचायत दे विच बैठ के प्रोग्राम सुनते हैं और पूरी पंचायत की चिट्ठी सानू मिलती है बहुत चंगा लगता है और अगला गीत थोड़े सब दे रेडियो सेट ते आ रहा है जी इस गीत नू आवाज़ गुरदास मान उन्होंने दिती है और इस गीत की फरमाइश बहुत सारे दोस्तों ने चिट्ठी राही की सी ये गीत थोड़े रेडियो सेट ते आ रहा है

प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां इस वेले चल रहे 3:44 और 23 सैकेंड इस वेले स्टूडियो की घड़ी ते हो रहे हैं और अगला खत प्रोग्राम दे विच शामिल करते हैं। इस खत नूं भेजन वाले दोस्त, बहुत सारे दोस्त, बहुत ही खूबसूरत नाम, और इन्होंने सानू खत भेजा जी। गुरप्रीत कौर तंगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर, सहजप्रीत सिंह, पिंड तंगोरी, जिला SAS नगर मोहाली तो चिट्ठी भेजी है जी। सब तो पहला प्यार भरी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। और गीत इन्होंने कोई नहीं लिखिया, सो किसी भी गीत दे नाल कहिंदे नाम शामिल कर लिया जाए जरूर जी। रामनाथ अतापुर कलोनिया जिला श्री फतेहगढ़ साहब तो डाकखाना चनार थल कलां तो चिट्ठी भेजी है जी। और इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रुख लगाओ पानी बचाओ दा संदेश दिता है जी। जरूर जी, बिल्कुल तुहाडा संदेश बहुत ही खूबसूरत, और आपां सारे रल मिल के इस दे उत्ते अमल करिए तां किन्ना खूबसूरत बन जाए साडा आला दुआला। और सत श्री अकाल भेज रहे हैं, सत श्री अकाल जी। श्री फतेहगढ़ साहब तो रामनाथ अतापुरी, सुखमनजीत, सहजप्रीत कौर उन्होंने चिट्ठी भेजी है शामिल करन दे लई, कहिंदे तुहाडा धन्नवाद प्रोग्राम दे विच चिट्ठी शामिल कीती, बहुत बहुत शुक्रिया जी तुहाडा भी। सो गीत तो इन्होंने नहीं लिखिया, पर चलो कोई गल नहीं, असी चिट्ठी इन्हें शामिल कर ली है। कनेरा महला पटियाला तो मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक बत्ता, करण बत्ता, गीतू बत्ता, निहार का वंश और हार्दिक उन्होंने सानू चिट्ठी भेजी है। कोई भी गीत कहिंदे सुना दिता जाए। पिंड इस्लाम वाला जिला फाजिलका तो सोहन लाल उन्होंने चिट्ठी भेजी है। नाल ने इन्हां दे ओम प्रकाश रानी और शगन राती, लवकुश वर्मा, हनू राठी, अमन गौड़, कंचन कंचन बीरट, कुलदीप ढींगरा, पिंड कुड़ियाणा, बाबू सिंह मैनेवाला, छत्रपाल सिंह खंगूड़ा, रजिंदर सिंह खंगूड़ा, गुरमेज सिंह विरक पिंड कमालवाला तो, और रणजीत कौर भट्टी, बोर सिंह भट्टी, काका भट्टी, और ये बहुत सारे दोस्त इन्होंने अलग अलग पिंडा तो सानू जिहड़ा है अपना इको ही खत भेजा है। और ये सारे दोस्त मैनूं लगता रल मिल के प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो नूं। और अमरिंदर गिल उन्हां दी आवाज़ विच कहिंदे गीत सुना दिता जाए। अगर गीत ये नहीं होया जिहड़ा तुसीं लिखिया है तो कोई होर गीत सुना दीए जी, जरूर तुहानूं पसंद आएगा, मैनूं पूरी पूरी उम्मीद है इस गल की। और बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसीं इन्नी दूरों सानू इन्ने खूबसूरत खत जड़े लिखते हो। अगला खत बंसी लाल संधु पिंड तेका मेंढी तो पोतरा कबीर और जैजबीर और संधु वरनीत संधु पोतरिया इन्हों दे वरनीत और पवनीत कौर संधु और सारा संधु परिवार लाडी सिंह धालीवाल उन्होंने सानू रणधीर सिंह और जंगूरी उन्होंने सानू ये जंगूरी लिखिया शायद इन्होंने अंग्रेजी दे विच नाम लिखा है। सो बेटी बचाओ बचाओ देश बचाओ और रुख लगाओ दा नारा इन्होंने दिता है। खत पढ़न वाले दोस्तों इन्होंने कहिंदे कि प्यार भरी सत श्री अकाल, बहुत बहुत शुक्रिया बंसी लाल संधु जी, बहुत ही खूबसूरत खत और नाम जिहड़े तुसीं सानू लिख के भेजे ने।

श्री गुरु रविदास नगर मलोड़ तो नानक चंद, विजय कुमार, बंटी कुमार, जॉनी कुमार, कृष्ण कुमार, देवानंद, सीमा, नज़ाकत, एली और कुमार जस्सल, धन्नालाल, नथन राम हुणा ने सानू चिट्ठी भेजी है गायक शमशाद बेगम की आवाज़ में। कहिंदे गायिका की आवाज़ में गीत सानू सुना दिते जावे, जरूर सुनावांगे जी। जिहड़ा गीत तुसीं लिखिया है जरूर मैं कोशिश करांगी यही गीत प्रोग्राम च शामिल किया जाए। सो लता जी की आवाज़ में एक पंजाबी गीत सुनते हैं, और पंजाबी हिंदी गीत की फरमाइश आई सी पर वह गीत असीं नहीं सुना सकते, पर लता जी की आवाज़ में पंजाबी गीत मैं प्ले कर रही हूँ। तुहाडे सामने रेडियो सैट पर आ रहा है, अज उन्हां दा जन्मदिन भी है और इस करके असीं लता जी नूं याद करते हैं। जिहड़ा है जिहड़े उन्हां दे बहुत ही खूबसूरत गीत ने, वो साडे दिल दे विच रूह दे विच हमेशा वसदे रहिंदे।

प्यार एक खूबसूरत एहसास जो दिलों को करीब लाता है। सच्चे प्यार में ना कोई दिखावा होता है ना कोई डर, बस एक दूसरे पर विश्वास और दिल में खूबसूरत सा असर।

नजरें जब किसी की कद्र करना सीख जाएं, तो रिश्ते अपने आप खूबसूरत बन जाते हैं। किसी को अपना समझना ही प्यार की पहली निशानी है, और किसी की नजरों में काबिल बन जाना जिंदगी की सबसे प्यारी कहानी है। आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो पेश किया जा रहा है प्रोग्राम सदाबहार गीत। प्रोग्राम च अगला नगमा जब जब फूल खिले फिल्म चलिया, आवाज लता मंगेशकर दी। इस गीत नु लिखिया आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी।

तरंग। सदाबहार गीतांश। अगला गीत प्रेम रोग फिल्म दा। आवाज लता मंगेशकर दी, गीतकार ने संतोष आनंद और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये समा है सुहाना, हवाओं में है प्यार, हर तरफ बिखरी है खुशियों की बहार। चांदनी रात और दिल में मीठी सी उमंग, ऐसे खूबसूरत पल में क्यों ना सुने कोई मधुर।

कुछ गलियां सिर्फ रास्ते नहीं होती, उनमें बचपन की यादें और अपनों का प्यार बसता है। वक्त आगे बढ़ जाता है मगर बीते दिनों की खुशबू दिल में हमेशा वैसी ही रहती है। मिठिया यादानु समेट के रखिया होया सी इस खूबसूरत नगमे ने। प्रोग्राम सदाबहार गीत दा आखिरी नगमा दो रास्ते फिल्म चलिया, आवाज लता मंगेशकर दी, गीतकार ने आनंद बख्शी ते संगीतकार ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। इस शब्द का गायन कीता सी भाई बख्शीश सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। बाबा नानक देव जी ने उदासियां दौरान हाजियां दी शंका निवृत्ति इन्हां लफ्जां च कीती कि शुभ अमलां दे सिट्टे वजों ही किसे दे जीवन नूं जाणिया जांदा है। उस अनुसार ही वड्डे अते छोटे दा निर्णा हुंदा है। हवाला इस तरह मिलता है, पुछन फूल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमानोई, बाबा आखे हाजियां सुब अमला बाजो दोनों रोई। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने शुभ कर्मन दी परिभाषा ही बहु अर्थी करदे होए शुभ कर्मन दी जाचना अकाल पुरख पासों की थी। सुनदे हां प्रोफेसर बलविंदर पाल सिंह होरां पासों वार्ता, शुभ कर्मन ते कबहु न टरो।
1: शुभ अशुभ दा अंतर करन दे लई बुद्धि दी वरतों करनी हुंदी है। तर्कशीलता अते विवेकशीलता दे आधार ते बहुत लोग परंपरा विचले शुभ अशुभ नूं छड़ चुके हन। बहुत सारे दुबदा विच पए रहिंदे हन अते कुछ ऐसे भी हन जो मनो तां विज्ञानक सोच अते गुरबाणी दी विवेक अनुसार निश्चा दृढ़ रखदे हन, पर समाजिक लोकाचारी दे करके जां धार्मिक कर्म कांड दे करके अविवेकी क्रियाचार भी करी जांदे हन। शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो एक जाचना है, एक निश्चा ते दृढ़ता है जो अरदास रूप विच परम पिता परमात्मा पासों मंग कीती गई है। इत्थे शुभ कर्मन विच कर्म कांड वाले शुभ अशुभ कारज नहीं आउंदे, सगो मानवता दे कल्याण धर्म दे जयकार अते मनुखी हक्कां दी राखी वाले शुभ कर्मन दी गल आखी गई है। दशमेश पिता ने अपने स्वईये देह शिवा बर मोहे एह शुभ कर्मन ते कमहू ना टरो विच परम पिता अकाल पुरख पासों यह वर मंगया है कि वह चंगे मानववादी कम्मां तों कदे भी पिछे ना हटन। इस शुभ कर्मन विच गरीबां दी पीड़ा दूर करन दे लई

देह सेवा बरमोहे एहै, सुब करमन ते कब हो न टरों। ए स्वयेदा गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अनुसार उही जीव धन है जो मुख तों परमात्मा दा नाम उचारदा है ते मन विच्चों विकारां नाल जूझ के मन अते जगत ते जित प्राप्त करन दी लालसा रखदा है। तन जियो ते को जग मैं, मुखते हर चित मैं जुद विचार है। सरवण करदे हां डॉक्टर अलंकार सिंह होरां पासों इस सवैये दा गायन।

तन जियो तेह को जग में मुक्ते हर चित में जुद विचार है। इस सवैयद गायन कीता सी डॉक्टर अलंकार सिंह होरां।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलुओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जहाज निर्माण, खाद्य सुरक्षा और जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है।
1: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
2: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉ. सिंह ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस अंतरिक्ष साझेदारी 6 दशक से अधिक पुरानी है, जिसमें रॉकेट प्रयोगों से लेकर गगनयान और संयुक्त उपग्रह मिशन तक शामिल हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि IIM बंगलुरु, IIT कानपुर और IIT चेन्नई के अध्ययनों के आधार पर भारत की माल ढुलाई लागत में लगभग 6% की कमी आई है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से

जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधि का विस्तार स्वस्थ गति से जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 3 और पदक जोड़े हैं। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 18 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 41 पदक के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ

0: पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 18 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 41 पदक के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी दा ही जलंधर केंद्र है। ते आओ चात मारदे हां साडे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां वल्लों।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी दा ये जलंधर केंद्र है। त्याओ सुनदे आ देश प्रेम दा एक गीत।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। स्टूडियो घड़ी के मुताबिक 6:20 हो रहे हैं तो आओ हुण सुनते हैं प्रदेशक खबरां।
1: पापा की उम्र भर की कमाई उन्हां दी सिख्या
2: अते हमेशा साड़ी फिकर करना। वैसे उन्हां दी एक जमा पूंजी बैंक विच भी है
1: पर क्लेम करना मुश्किल होवेगा।
2: हुण होर भी आसान हो गया है। बैंक दी वेबसाइट जा शाखा ते जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, दस्तावेज जमा करो, 15 दिनां च रकम प्राप्त करो अते नॉमिनी नाल क्लेम दा निपटारा होवे होर भी आसान।
3: आरबीआई कहिंदा है
2: जानकार बनो, सचेत रहो।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। भारत वालों पाकिस्तान के दहशतगर्दी टिकाणियां ते कीती गई सर्जिकल स्ट्राइक की अज 10वीं परेकंड है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा सूबे च नशियां की मौजूदा स्थिति तरसयोग है ते सरकार इस नूं काबू करन विच असफल रही है। देश अज महान इनकलाबी शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मौके श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। पंजाब का सूबा पदरी समागम लुधियाना विखे। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने कहा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मुद्दे से पुलिस जांच शुरू कर दी गई है। दंगा करन जां करवाउण वाले किसी भी व्यक्ति नूं बख्शा नहीं जाएगा। अते एशियाई खेडां विच भारत दी ईशा सिंह ने औरतों के 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत मुकाबले च चांदी दा तमगा जितया। भारत की मर्दां की क्रिकेट टीम भी सैमीफाइनल विच पहुंची। ते हुण खबरां विस्थार नाल। भारत अज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वरेगंढ मना रहा है। 28-29 सितंबर 2016 की रात को फौज ने कंट्रोल रेखा के पार दहशतगर्दी टिकाणों खिलाफ निशानाबद्ध कार्रवाइयां कीतियां। यह कार्रवाइयां 18 सितंबर को उरी दहशतगर्दी हमले तो बाद कीतियां गईयां जिस विच 18 भारतीय जवान शहीद हो गए सन। इस कार्रवाई ने दहशतगर्दी खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति विच एक तब्दीली की निशानदेही की। इस तो बाद साल 2019 बालाकोट ते 2025 ऑपरेशन सिंदूर विच पाकिस्तान खिलाफ कार्रवाइयां कीतियां गईयां। कल आकाशवाणी ते प्रसारित अपने मन की बात प्रोग्राम च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 दे सर्जिकल स्ट्राइक नूं अहम प्राप्ति दस्या। उन्हां कहा कि पिछले दहाके विच दहशतगर्दी विरोधी भारत दा नजरिया बदल गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दहशतगर्दी हमलों के लंबे समय तो बाद सर्जिकल स्ट्राइक भारत की एक फैसलाकुन कार्रवाई सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनतक सेवा च 25 साल पूरे हो रहे ने। एक अजिहा सफर है जिहड़ा जन सेवा तो देश सेवा के मंत्र ते अटुट वचनबद्धता नाल प्रभाषित हुंदा है ते इह सिलसिला जारी है। सेवा ते सुशासन की इसे सोच तो प्रेरित होकर सरकार 2047 तक एक विकसित भारत के टीचे नूं हासिल करन लई लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास ते समाजिक सशक्तिकरण राही इस समर्पण लोगों के जीवन च तब्दीली लिया रहा है। अज सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष लड़ी च असीं तुहाडे लई एक मिसाल लैके आए हाँ कि किस तरह इस दृष्टिकोण नूं पीएम स्वनिधि योजना राही अमल च लिया गया। होर वेरवे नाल एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 विच फड़ी लगाउण वाले विक्रेतावां नूं कार्यशील पूंजी कर्जिआं राहीं रस्मी वित्ती प्रणाली विच लिया के उन्हां दे जीवन विच बदलाव लिआउण दे मंतव नाल शुरू कीती गई सी। इस योजना हेठ अगस्त 2026 तक 78 लाख तों वध विक्रेतावां ने 19,171 करोड़ तों वध दे 1.18 करोड़ तों वध कर्जे प्राप्त कीते हन। पंजाब विच भी बहुत सारे फड़ी लगाउण वाले विक्रेतावां ने अपने कारोबार शुरू करन लई कर्जे प्राप्त कीते हन अते ਕੀਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 2 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ।
6: ਮੇਰਾ ਪੀਐਮ ਸਵਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਰਾਇਟੀ ਹੋਰ ਭਰੀ ਜੀ। 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 50,000 ਦਾ ਲੋਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਉਣ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
7: ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੀਐਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 50,000 ਦਾ ਲੋਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ

0: प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव प्रतिष्ठा जैन ने दूजा इनाम हासिल किया। जापान च एशियाई खेडां विच भारत की ईशा सिंह ने महिलावां दे 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत मुकाबले च चांदी दा तमगा जित्तिया। इस दौरान भारत की मर्दां दी क्रिकेट टीम भी एशियाई खेडां दे सैमीफाइनल विच पहुंच गई है। ते आखर च खास खबरां एक बार फिर तो भारत वालों पाकिस्तान के दहशतगर्दी टिकाणियां ते कीती गई सर्जिकल स्ट्राइक की अज 10वीं वरेगंढ। देश अज महान इनकलाबी शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मौके श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। एशियाई खेडां च भारत की ईशा सिंह ने औरतों के 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत मुकाबले च चांदी दा तमगा जित्तिया। इस दे नाल ही ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਰਾਤ 8:30 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

0: आ जाओ पंच साहब लांग आओ।
1: आ गए जी आ गए जी। और सुनाओ, मैं क्या पहले जय हिंद महाराज।
0: जय हिंद जी, जय हिंद। सुनाओ पंच साहब की हाल चाल
1: हाल चाल
0: है।
1: बहुत बढ़िया। मिठी मिठी कितने बारिश हो जाती है तो होर माहौल बढ़िया बन जाता है। किण
0: हाँ
1: मिण लाई हुई है, रब ने मौसम बदल रहा है।
0: वैसे देखो हुण जिहड़ा आ मौसम है ना, रब थोड़ी जी मेहर रखे
1: जी
0: कि झोना पक्कन वाला
1: सही गल कही।
0: है जी।
1: वैसे बदलाव जिहड़ा कुदरत दा नियम है।
0: हाँ
1: मैं बदलाव दी जदों गल करदा तां मैनूं ओह समां वी याद आउंदा है कि जदों देश दे विच गुलामी दी हवा वगदी सी तां आजादी दा वातावरण तैयार हो रहा सीगा। ओह वी
0: हाँ
1: बदलाव दा इक समां सी।
0: बहुत। देखो जी साढ़े जो आप गल करते हैं अज जिन्हों का आप जन्म दिहाड़ा मनाया
1: लै तुसीं तां पहुंच गए उत्थे
0: शहीद भगत सिंह
1: जी जी बिल्कुल।
0: के उन्होंने जो देश के लिए जवानी दे विच देश के लिए जो कुर्बानी की है ना,
1: जी
0: वो शहादत का तो कोई मुकाबला ही नहीं जी।
1: हाँ। और उन्होंने जो सानू संदेश दिता वो कहिंदे पढ़ो लिखो अपनी आज़ादी दे लई अपने हक्कां दे प्रति जागरूक होवो, है
0: हाँ
1: ना। और गूंगी बोली सरकार नू जिहड़ी सुनदी नहीं सीगी उन्हों उस वेले अंग्रेजी सरकार नू
0: जगाया।
1: जगाया।
0: हाँ
1: हाँ
0: दसता
1: जी
0: कि तुसीं सानू बहुती देर तक जिहड़ियां गुलामी दियां जंजीरां च जकड़ के नहीं रख सकते।
1: नहीं रख सकते।
0: हाँ जी रंग दे बसंती। क्योंकि देखो आपां गल करदे ने पंच साहब कि कुछ चीज़ां जिहड़ियां खानदान चों मिलदियां ने कि उहनां दा चाचा भी इसे काम च सी, इसे विच जिदा आपां कहने लहर च चलदा पिया सी पगड़ी संभाल, ते उहनां नूं गूढ़ती एक तरीके नाल मिल गई कि मैं जिहड़ा हैगा यही काम करना हैगा, मैं तां देश की आज़ादी जिहड़ी हैगी है ना ये लैके आउणी है।
1: लिखण वाले ने लिखिया कि जदों किसी वेले उन्हां नूं इह कहा गया ना भी तुसीं माफ़ी मंग लो ते तुहाडी जिहड़ी फांसी की सज़ा जिहड़ी माफ़ हो जाएगी, तां ओह कहिंदे भी जीण की ख्वाहिश तां हर किसी च हुंदी है पर मैं इहो जिहे जीवन तो मौत जिहड़ी ओह कितें वधिया समझदा वां,
0: जी
1: क्योंकि इस मौत दे सदका मेरे वर्गे किन्ने ही लोग जिहड़े ने अगों जन्म लैणगे, किन्ने ही भगत सिंह पैदा होणगे।
0: होणगे। सो देखो आपां उन्हां नूं जदों कहिंदे आ कि जो उन्हां दे सुपने सी उन्हूं साकार करन 'च अपना जिहड़ा योगदान पाईए, इस तों वड्डी कोई श्रद्धांजलि साडे शहीदां प्रति
1: नहीं हो
0: हो
1: सकती।
0: सकदी जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सो अज देखो वक्ख वक्ख समारोह मनाए गए सी उन्हां नूं शहीदां नूं याद करदिआं होइआं, ते ए दिन ते जिहड़ी आपां इक रिपोर्ट तैयार कीती है जी।
1: अच्छा जी
0: लो पहलां ओह सुणदे आ
1: लो फिर।
2: अज शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी दे जन्मदिन मौके पंजाब भर विच उन्हां नूं श्रद्धा ते सत्कार नाल याद कीता गया।

0: पागल हो गया, ठीक है जी। कुछ भी वो रस्ते दे विच आंदा है, कोई भी निर्जीव वस्तु होवे, घा फूस हो गया, अपना पत्थर हो गया, कुछ भी चीज़ लकड़ा हो गया, उन्होंने वो वड़दा है। इस तो अलावा ये कोई भी उसका जिहड़ा मालक है उसनों भी नहीं पहचानता, क्योंकि जिहड़ा विषाणु है उसके दिमाग के उत्ते असर करता है, वह दिमागी तालमेल जिहड़ा है खो बैठता है, तो वह अपने मालक तक नूं वड़न नूं जांदा है। जे आपां अगे गल करिए, उहदा जिहड़ा जबाड़ा है वह लमक जाता है, मूँह चों लारां डिगदियां हन, तो हौली हौली जिहड़ा है उसनों अधरंग हो जाता है, अधरंग उस दियां लत्तां नूं हुंदा है, हौली हौली सारे शरीर तक जिहड़ा है अधरंग फैल जाता है, तो एक दो दिनों दे विच जिहड़ा है कुत्ते दी मौत हो जाती है। जिवें मैं तुहानूं पहलां भी दस्या कि ये 100% खतरनाक बीमारी है, एक बार जे लक्षण आ गए तो इस बीमारी तो बचा संभव नहीं है, मौत पक्का हुंदी है। हुण जे गल करिए पशुआं दे विच, क्योंकि पहलां ये भी दस्या मैं तुहानूं कि मझां गावां भेड़ां बकरियां सूरां दे विच भी ये बीमारी पाई जाती है। आम तौर पर गावां मझां दे विच जिहड़े लक्षण वेखे या निशानियां वेखिया जांदियां ने, शुरुआती दौर दे विच तां इहो जिहियां निशानियां कि दुध घट जांदा है, भुख नहीं लगती वेखण नूं मिलदियां ने, पर जिहड़ियां खास अलामतां हुंदियां ने इस तरह हुंदियां ने कि जिहड़ा पशु है वह बेचैन हो जांदा है, पशु जिहड़ा है अपना धरती ते अपने खुर मारदा है, अड़ेंगदा है, वार वार पेशाब करदा है, वह अपना जिहड़े सिंग है कंधा च मारदा है, जिस करके उहदे सिंगां तों खून भी निकलदा है, क्योंकि वह अपना दिमागी तालमेल जड़ा है अपना वह खो बैठता है, इस करके अजिहे लक्षण वेखण नूं मिलते हैं। हौली हौली उसनों अधरंग हो जाता है, तो मूँह चों झग निकलती है, तो जिवें पहलां भी दस्या कि एक बारी निशानियां आ जाण तो मौत पक्की है, तो कुछ दिनों दे विच जड़ा पशु है वह मर जाता है।
1: सुनी जी जानकारी,
2: हाँ बहुत जरूरी गल्लां सी जी।
1: तो फिर हुण तुहानूं कल दा प्रोग्राम दसीए जी।
2: दसो जी महाराज,
1: कल नूं सवेरे 6:30 बजे खेतीबाड़ी विच कमाद दी देखभाल बारे गल्लां बातें साझियां करांगे,
2: ठीक है।
1: ते शामां नूं 6:30 बजे किसान वाणी प्रोग्राम होएगा जी। ते मौसम संबंधी रलिया मिलिया है जी, कोई खास चेतावनी है नहीं जी।
2: अच्छा,
1: की इरादा फिर अपना?
2: चलिए जी फिर, जय हिंद।

0: एसी देहाती प्रोग्राम मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ये जलंधर केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो जुड़े हुए हो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र दे नाल, ते आओ तुहानूं लै चलदे आं साडे दिल्ली केंद्र जिथों तुसीं सुणोगे जन सेवा देश से देश सेवा।

0: लोग यूजीसी के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक छोटी सी उंगली जिसने पहली बार स्कूल की किताब को छुआ, एक गांव का बच्चा जिसके लिए स्कूल तक पहुंचना ही कभी सबसे बड़ी चुनौती थी, और एक युवा जिसके हाथ में डिग्री तो थी लेकिन दुनिया बदल रही थी और उसके सामने सवाल था कि क्या मेरी शिक्षा मुझे भविष्य के लिए तैयार कर रही है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ कक्षा, किताब और परीक्षा का नाम नहीं है। शिक्षा वो नींव है जिस पर किसी व्यक्ति का भविष्य और किसी राष्ट्र की दिशा तय होती है। गुजरात में शाला प्रवेश उत्सव और गुणोत्सव जैसे प्रयासों से शुरू हुई एक सोच ने स्कूल में प्रवेश से लेकर सीखने की गुणवत्ता तक का सवाल उठाया, और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, कौशल विकास, विशेषज्ञता आधारित उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा में सुधार ने शिक्षा को केवल डिग्री नहीं बल्कि ज्ञान, कौशल और क्षमता से जोड़ने की दिशा तय की। इसी यात्रा में परीक्षा पे चर्चा ने परीक्षा को जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि सीखने की यात्रा का एक पड़ाव मानने की बात की। तो गुजरात से दिल्ली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में बिताए 25 वर्षों में क्या कुछ बदला इस दिशा में, आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज का हमारा विषय है शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा और हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्व यूजीसी सदस्य सुषमा यादव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद और नमस्कार।
1: संजीव जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने शाला प्रवेश उत्सव और गुणोत्सव जैसे अभिनव प्रयोग शुरू किए थे, और इसका असर ये हुआ कि राज्य में ड्रॉपआउट रेट काफी कम हो गए, और यहीं से जब आगे बढ़े तो निपुण भारत और विद्या प्रवेश जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जब हम देखते हैं तो गुजरात के उस मॉडल और आज के राष्ट्रीय विजन के बीच आप किस तरह का समायोजन या संबंध देख पा रहे हैं?
3: जैसे भारत कोशिश कर रहा है कि विकसित भारत बनने की 2047 में, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है उसके नागरिकों की शिक्षा। जब देश शिक्षा में निपुण होगा तभी देश आगे तरक्की कर सकता है। तो इस विषय में जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब 25 साल पहले अपनी यात्रा गुजरात से शुरू करी थी एज चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने वहां स्टेट में देखा, गुजरात तब शिक्षा के स्फेयर में इतना डेवलप्ड नहीं था, तो उन्होंने देखा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, सोशल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। सो उन्होंने ये दो इनिशिएटिव्स, एक शाला प्रवेशोत्सव जिसमें कि एंट्री एनरोलमेंट स्टूडेंट्स की बढ़ाने के लिए ये प्रयोग किया था 2003 में, सबसे पहले जो ड्रॉप आउट रेट था 37% था गुजरात में, तो धीरे धीरे करके इससे बढ़ते हुए बहुत कंसिडरेबल ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस हुआ। तो एक तो ये था, और दूसरा था गुणोत्सव जिसमें कि इवैल्यूएशन और अकाउंटेबिलिटी बच्चों की देखी जाती है। तो इन दोनों इनिशिएटिव से उन्होंने आगे प्रयोग शुरू किया और उसको अब स्टेट लेवल, जैसे गुणोत्सव तो असम में भी अडॉप्ट हुआ और कुछ और स्टेट्स भी अब करना चाह रही हैं, और नेक्स्ट इनिशिएटिव 7th edition जो है वो January 7, 2027 को होगा असम में, और गुजरात में तो चल ही रहा है। तो ऐसे इनिशिएटिव जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एजुकेशन के फील्ड में जैसे भारत जाना जाता है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से, यूथ पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया की वो भारत में है और वर्ल्ड में पॉपुलेशन एज हो रही है, तो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके जो नागरिक और यूथ हैं वो निपुण हो, शिक्षा के तरीके से स्किल्ड हो, निपुण हो, और तभी देश भी आगे तरक्की करेगा और तभी दुनिया में लीड कर सकता है भारत।
1: जी हाँ, हम अपने आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में बताएं तो गुणोत्सव जो योजना थी वो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों के सीखने के स्तर, शिक्षकों की उपस्थिति और स्कूल के बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने से जुड़ी थी। जब हम निपुण भारत की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बच्चा प्राथमिक कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और जो नंबर ज्ञान है उसे अवश्य हासिल कर ले। विद्या प्रवेश की जब हम बात करते हैं तो इसका मुख्य मकसद यही रहा कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल के नए माहौल में ढलने और औपचारिक पढ़ाई के लिए मानसिक एवं भावनात्मक रूप से तैयार किया जा सके। विद्या प्रवेश की चर्चा को प्रोफेसर सुषमा जी अगर आगे बढ़ाएं तो जैसा कि विद्या प्रवेश के बारे में हमने बताया कि 3 महीने के प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल का मुख्य लक्ष्य रखा गया कि बच्चा जब स्कूल में जाए उससे पहले उसको एक

ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 12वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

0: भावनात्मक और शैक्षणिक माहौल प्रदान किया जाए कि स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो सके। कुछ समय पहले तक इस तरह की सोच रखना भी सरकारी स्तर पर किसी योजना को बनाया जाए कि बच्चा पहली कक्षा में जाने से पहले तैयार हो, इसके लिए कोई योजना लाई जाए, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता थी कि इस योजना को न सिर्फ शुरू किया गया बल्कि इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। सामाजिक परिवर्तन के लिहाज से और बच्चों के मानसिक विकास के लिहाज से कैसे देखती हैं इस योजना को आप?
1: भारत में विद्या प्रवेश या विद्यालय जाना बच्चों के लिए एक प्रकार से एक पनिशमेंट होती थी, वो क्योंकि सीधे स्कूल में जाना घर का माहौल होता है जहाँ उस प्रकार की नियमबद्धता नहीं होती और बच्चा अपनी मर्जी का ऑलमोस्ट मालिक होता है, स्वामी होता है। और जब वो विद्यालय में जाता था तो बहुत सारे समय के अनुशासन की सीमाएं उस पर लग जाती थी। उस गैप को दूर करने के लिए यह एक प्रकार से मैं बहुत सुंदर प्रयास मानती हूँ जो स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया गया, और ये NEP 2020 जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, उसमें कहा गया कि लर्निंग शुड बी ए प्लेजेंट एक्सरसाइज, यानी सीखना आरंभ बच्चे का ऐसा होना चाहिए कि वो उसको एंजॉय करे, वो उसके लिए एक फन जैसी एक्सरसाइज हो। तो इस विद्या प्रवेश का यही उद्देश्य है। और आप जान सकते हैं कि बड़े शहरों में और शहरी उच्च वर्ग में प्ले स्कूल्स का कंसेप्ट आ चुका था लेकिन वो पूरे देश के बच्चों को उपलब्ध नहीं था, तो उनको भी खेल आधारित गतिविधियों के आधार पर सीखने की प्रक्रिया आरंभ करना, औपचारिक शिक्षा आरंभ होने से पहले उनको उस माहौल में सहज रूप से ढाल लेना और वहीं से निपुण भारत की भी नींव रखना। निपुण इज वेरी इंटरेस्टिंग, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और आपको याद होगा आयुषर जैसी बहुत सारी संस्थाएं पहले ये कहती रही कि 10वीं तक बच्चा पहुंच जाता है देश के सरकारी विद्यालयों में, लेकिन ना वो पढ़ सकता है, ना वो लिख सकता है पूरी बात, और ना ही वो गणना में निपुण होता है। इसलिए वह मिशन रखा गया था और उसी की रणनीति की नींव मजबूत करने के लिए, बुनियाद मजबूत करने के लिए विद्या प्रवेश का ये एक बहुत सुंदर मॉड्यूल बनाया गया। और जिसमें ये हो सकता था क्योंकि ये प्रारंभिक है तो हर राज्य अपनी अपनी स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार पाठ्य सामग्री तैयार कर सकता था ताकि बच्चे को बहुत अजनबी भाव ना लगे वहां पर, जैसा वो घर में अभी तक रहा उसी को थोड़ा आगे ले जाते हुए पढ़ना लिखना और गणना करना आरंभ कर दे। थोड़ा शाला प्रवेशोत्सव पर और गुणोत्सव पर भी बात करना चाहती हूँ क्योंकि वो कन्या केलमणि महोत्सव था एक तरह से, कि कन्या किस प्रकार से विद्यालय पहुंचे भी और फिर वहां रहे भी, क्योंकि ड्रॉपआउट दर बहुत ज्यादा थी उनकी, तो इसलिए बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल उसके माध्यम से दिया गया था। और 3 दिवसीय अभियान यानी जिसमें जनप्रतिनिधि भी और अधिकारी भी गांव-गांव जाकर बच्चों को बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, प्राथमिक ये खेल विद्यालय इन सब में प्रवेश दिलाते, शिक्षण सामग्री किट वितरित करते, तो अपने आप ही एक नामांकन उत्सव जैसा बन जाता और बच्चों को भी इसमें रुचि होती और शिक्षक इसलिए सजग रहते क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का विशेष ध्यान था। यही गुणोत्सव का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि ये माना गया कि जितने सरकारी विद्यालय हैं उनमें गुणवत्ता कम होती जा रही। तो गुजरात में 2009 में जो शुरू हुआ, बेसिकली माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी, इसीलिए जाने जाते हैं कि इन्होंने जिस भी क्षेत्र पर ध्यान दिया वहां गुणवत्ता और जवाबदेही उत्तरदायित्व निश्चित करने पर बल दिया और विद्यालयी शिक्षा में इन तीनों के माध्यम से ड्रॉपआउट कम करने की बात और शिक्षा और शिक्षण और शिक्षार्थियों की गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही गई।
0: चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और संजीव जी कुछ और योजनाओं पर चर्चा करते हैं। गुजरात से शुरुआत हुई डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज की। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी विशेष स्पेसिफिक विषय को लेकर शुरू की गई यूनिवर्सिटी को डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी या ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। इस तरह के विश्वविद्यालय आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। सवाल आपसे ये है संजीव जी कि जो पारंपरिक विश्वविद्यालय हुआ करते थे जहां हम देखते हैं कि आर्ट्स की भी पढ़ाई हो रही है, कॉमर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, विज्ञान के विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं, उनसे अलग 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज शुरू हुए, आज के दौर में भारतीय युवाओं के लिए कितने कारगर हैं और 21वीं सदी

0: चुनौती के लिए वो कैसे तैयार कर रहे हैं?
1: जी, जैसे आपको पता होगा कि पहले यूनिवर्सिटीज में जनरली सब हर फील्ड में एजुकेशन दी जाती है, मास्टर्स आप अचीव करते हो, उसके बाद पीएचडी उसी फील्ड में लेते हो। लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे इंजीनियरिंग होता था तो इंजीनियरिंग भी एक ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जैसे लॉ फॉर एग्जाम्पल, लॉ का यूनिवर्सिटी का 2 ईयर कोर्स होता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको 5 ईयर्स कोर्स स्पेसिफिक कर दिया कि बच्चे को 12वीं के बाद ही एकदम एडमिशन वहां चले जाएं उस यूनिवर्सिटी में और उसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन दें। तो लॉ के 5 ईयर कोर्सेज बने, 3 ईयर कोर्सेज भी बने, 5 ईयर कोर्सेज भी हैं कई। ये जरूरी था कि डोमेन स्पेसिफिक, जैसे फिर आपको बताऊं कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एंटर कर चुका है, लॉ स्कूल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बने ही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज भी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम और एनर्जी की एक यूनिवर्सिटी देहरादून में बनी, वो प्राइवेट सेक्टर में थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां एक लॉ स्कूल भी बना प्राइवेट सेक्टर में, वही 5 ईयर स्कूल
0: जी।
1: वहां बच्चे खूब जाने लगे एंड उनकी इनटेक इन द इंडस्ट्री भी बढ़ गई बिकॉज वो उसी स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे थे। जैसे कई यूनिवर्सिटीज में मैं आपको बताऊं उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, जैसे इंटरनेशनली फोरेंसिक साइंस है या एस्ट्रोनॉमी की फील्ड, तो नासा वगैरह में भी यहाँ के स्टूडेंट्स कई गए हैं जो यहाँ से यूनिवर्सिटीज में पढ़ के, हालांकि एस्ट्रोनॉमी के लिए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में एस्ट्रोनॉमी की मास्टर्स कराई जाती है। तो सिमिलरली फोरेंसिक साइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइम की फील्ड में और कई फील्ड्स में, एनर्जी और पेट्रोलियम मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन मैंने आपको बताया, जैसे भारत बहुत आगे बढ़ रहा है स्पोर्ट्स की फील्ड में, जैसे एस्पिरेशनल इंडिया आगे चल रहा है, हर फील्ड में तरक्की हो रही है। सिमिलरली डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की यूनिवर्सिटीज स्पेसिफिक बन रही हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बनी और जैसे लॉ के बारे में मैंने आपको बताया, और इनकी एडमिशंस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो होता है CUET उसके थ्रू होती है। इसमें क्या है कि इंडस्ट्री की डिमांड, जब बच्चा ज्यादा टाइम एक ही फील्ड में लगाता है तो इंडस्ट्री की डिमांड उसको समझ में आती है और इंडस्ट्री को भी समझ में आता है कि ये बच्चा हमारे फील्ड की मास्टरी कर चुका है और इसको इनटेक लेना है। सो एक तो उससे मास्टरी होती है उस सब्जेक्ट में, दूसरी इंटरनेशनली भी प्रिपेयर होता है बच्चा, और तीसरा उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होती हैं बहुत ज्यादा।
0: सुषमा जी, अगर इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो पारंपरिक उच्च शिक्षा में अक्सर जो शिक्षण संस्थान और उद्योग के बीच की दूरी की बात होती रही है और हमने देखा कि इस कारण कई बार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो युवक हैं या जो छात्र हैं वो रोजगार से वंचित रह जाते थे। गति शक्ति विश्वविद्यालय या नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जैसे डोमेन स्पेसिफिक मॉडल आपके अनुसार इस खाई को कैसे पाट रहे हैं, इस अंतर को कैसे खत्म कर रहे हैं?
2: जी, संजीव जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये विश्वविद्यालय तो है ही, जैसे अगर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय तो अपनी तरह का एक विश्वविद्यालय ही है और उसने बाकियों से MOUs किए हैं, और फोरेंसिक टेस्ट के लिए हमारे यहाँ इतना लंबे समय अभी तक लगता था, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा था, अब इस विश्वविद्यालय ने उसको संभालना और अपने कैंपसेस के माध्यम से कुछ और एक्सपर्ट्स भी हमें प्रोवाइड किए हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है पहले रक्षा शक्ति माना जाता था, देयर वॉज नो यूनिवर्सिटी इन इंडिया विच वुड स्पेशली टैकल दिस एक्सेप्ट NDA, तो वह भी अब कुछ विशेषज्ञ तैयार कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ आरंभ तो गुजरात से हुआ लेकिन कौशल विश्वविद्यालय भी देश के बहुत सारे प्रांतों में खोले गए हैं जो स्पेसिफिकली स्किल इम्पार्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं, पहले नहीं थे। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी खोली गई है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, विमेन यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, और इनकी संख्या जो बड़ी है, केवल इतना ही नहीं, उसी बात को जो आपने मुझसे अभी पूछा है
0: जी,
2: उसको ही पाटने के लिए मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि UGC से संबद्ध रही हूँ। 2014 में यदि इस देश में 723 यूनिवर्सिटीज थी, अब जाकर के लगभग 1400, डबल ऑफ दी नंबर, 1400 से अधिक विश्वविद्यालय खोल दिए गए हैं। इसका मतलब है एनरोलमेंट अधिक हो रहा है, विशेषज्ञता भी बढ़ रही है, और टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज भी खुली हैं जो पहले कहीं नहीं थी। एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी खुली है, उद्यमिता विश्वविद्यालय, यानी ये जो स्किल बेस्ड एरियाज थे, डोमेन्स थे, वहां पर विशेषज्ञ उत्पन्न करने के लिए, तैयार करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालय खोले गए हैं। एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है हम मेरू मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज भी खोल रहे हैं जो थी पहले भी, लेकिन दूसरी तरफ जो विशेष विशेष क्षेत्र पहचाने गए जहां जहां विशेषज्ञता की आवश्यकता थी वो यूनिवर्सिटीज खुली हैं। कॉलेजेस को भी ऑटोनमस बनाने का प्रयास किया गया है, और जब मैं UGC में थी तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों को हमने इनकरेज किया कि वो ऑटोनमी के लिए आगे आए, बिकॉज इस देश में कुछ कुछ कॉलेज

0: कॉलेजेस तो इतने बड़े थे, दे कुड बीट एनी यूनिवर्सिटी और दे कुड कंपेयर विद द बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज. तो
1: जी
0: उनको ऑटोनॉमी देने की बात, ताकि शिक्षा का विस्तार हो. जहां 38,000 के करीब कॉलेजेस थे 2014 में, वो अब 55,000 के लगभग हो गए हैं. उसका विस्तार भी आप समझ सकते हैं. इनके अपने तरीके भी हैं. एडमिशंस क्लैट के माध्यम से लॉ यूनिवर्सिटीज में होता है.
1: जी
0: पहले केवल लॉ कॉलेजेस होते थे, अब लगभग हर प्रांत में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो जो लॉ ग्रेजुएट्स को तैयार कर रही है या एक्सपर्ट्स को तैयार कर रही है. और जो एक हमारे यहाँ गैप, जिसकी आपने बात की कि मैं बीए हूं, मैं एमए हूं, मैं पीएचडी भी हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उद्धरण देते हैं, तो बच्चा कोई जवाब नहीं दे पाता विश्वविद्यालयों के माध्यम से. अब जब बच्चा निकलता है तो उसके पास कोई ना कोई निपुणता, कोई ना कोई कौशल, कोई ना कोई विशेषज्ञता अवश्य होती है, और इस प्रकार ये रोजगार से जोड़ने का माध्यम है. दूसरी बात जो आपने पूछी है, इंडस्ट्री. अब लगभग हर विश्वविद्यालय को ये निर्देश दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से भी और यूजीसी के माध्यम से भी, कि वे तीसरे वर्ष में, हो सके तो सेकंड से ही शुरू कर लें, इंटर्नशिप करें, इंडस्ट्री से बात करें, आसपास जो भी इंडस्ट्री हो उनको कांटेक्ट भी करें. उनको किस प्रकार की आवश्यकता है, एक तो बच्चों को वहां इंटर्नशिप के लिए भेजें, इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स को, उन इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स हैं उनको विश्वविद्यालयों के स्टडी बोर्ड्स में या उनके मैनेजमेंट बोर्ड्स में, एकेडमिक काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में स्थान दें, ताकि रोजगार और शिक्षा के बीच का, कौशल और विद्या के बीच का जो अंतर अभी तक था वह अंतर समाप्त हो सके. यह प्रयास विशेष तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से किया जा रहा है, और इसमें बहुविषयक
1: जी
0: और लचीली शिक्षा हमने इसमें जोड़ी है उसके साथ ही, और कौशल कक्षा 6 से ही आरंभ हो जाए, और आईआईटीज का नंबर बढ़ाया गया है, आईआईएम्स का नंबर बढ़ाया गया है, एनआईटीज बहुत सारी खोली गई हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस बहुत सारे खोले गए हैं, आईसर्स बनाए गए हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक प्रकार से समानांतर बन सके, ताकि बच्चों को सच में ही, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा था कि आप
1: जी
0: सपना देखें, हम आपको उड़ान का अवसर देंगे, तो ये विश्वविद्यालय वस्तुतः उन सपनों को सत्य करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए सच में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं. कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में आ सकते हैं और बच्चों को अपनी विशेषज्ञता से लाभान्वित कर सकते हैं. ये बिल्कुल नई बात लगभग पिछले 3 वर्षों से भारत की उच्च शिक्षा में आई है.
1: और इन सब का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं वो थियरी के साथ साथ इंडस्ट्री में क्या कुछ घट रहा है उसको भी करीब से जान सकें, समझ सकें, ताकि जब वो इंडस्ट्री में प्रवेश करें तो वो उन चीजों के लिए नए नहीं रहें। संजीव जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले अगर पढ़ाई बीच में छूट जाए तो साल बर्बाद हो जाता था, लेकिन जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और उसमें बीच में पढ़ाई छोड़ने पर क्रेडिट्स सुरक्षित रखने वाला एबीसी सिस्टम हो या फिर मातृभाषा में पढ़ाई, कागजों पर तो ये बहुत बड़े नियम लगते हैं और लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया, लेकिन बतौर पत्रकार ग्राउंड जीरो में क्या बदला है इससे?
2: ग्राउंड जीरो पे बदलाव तो आया है. आप अगर देखेंगे तो भारत का फोकस जो था पहले, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहले आई 1986 में, उसमें कुछ बदलाव हुआ 1992 में, लेकिन तब से लेके उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी आई, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने पॉलिसी ही नहीं लेके आए. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, मतलब ऑलमोस्ट 3 दशक बाद. तो अब ये जरूरी भी थी बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंडिया ने हस्ताक्षर किया था 2015 में, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके मुताबिक लानी थी टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाय 2030. सो उसमें बदलाव तो काफी आया है, लेकिन अगर आप एंशियंट इंडिया में देखें, हमारा ज्ञान पहले 3 चीजों पर आधारित था, ज्ञान जो नॉलेज, विजडम प्रज्ञा और ट्रूथ सत्य को अचीव करने के लिए. सो आप देखेंगे कि हमारे एंशियंट भारत में तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी बहुत हाई स्टैंडर्ड्स की यूनिवर्सिटीज थी, जो उन एंशियंट इंडिया में पुरानी शताब्दियों में भी लोग चाइना से और यूरोप से और कहां कहां से लोग पढ़ने आते थे वहां, और इन हाउस फैसिलिटी थी वहां स्टूडेंट्स के रहने की, 4-4, 5-5 हजार

हर बच्चा वहां पढ़ता था। तो भारत ने कहीं ना कहीं बीच में जब इन्वेड हुआ, पहले मुगल से फिर ब्रिटिश से, समहाउ ये अपनी एज लूज कर दी। उसके बाद भारत ने दोबारा फोकस किया है, अब दोबारा अपने आप को, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो भारत के पक्ष में है और यंग कंट्री इंडिया माना जा रहा है, और स्किलिंग को बढ़ावा देते हुए हर युवा को स्किल से एम्पावर करने से उसको सक्षम बनाएं कि वो वर्ल्ड में टेक ओवर कर सके। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब की है, ये बहुत वास्ट डॉक्यूमेंट था जो प्रिपेयर किया, इसमें हायर एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म

0: कंटिन्यूअसली रिफॉर्म्स की प्रोसेस जरूरी है। शिक्षा ही भारत को आगे ले जा सकती है। जब हर इंडियन जब निपुण होगा शिक्षा में, तभी भारत आगे विकसित बन सकता है।
1: सुषमा जी, अभी संजीव जी ने एक अपने सवाल के जवाब में जो बताया एनएमसी के बारे में, हम उसी पर चर्चा करते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी के आने के बाद देश में मेडिकल सीटों को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है। एमबीबीएस और पीजी दोनों की सीटें लगभग दोगुनी हो गई हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई के इस तरह आसान और सुलभ होने से हमारे देश के युवाओं के लिए और गांव शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं, और पिछले दो दशकों में इसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो भावी भारत के निर्माण में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं?
2: अगर विकसित भारत की बात करें और भावी भारत की बात करें, तो शिक्षा और स्वास्थ्य वो दो मजबूत पिलर्स होते हैं जिनके आधार पर किसी भी विकसित राष्ट्र की नींव रखी जाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परिवर्तन किए हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेके, जिसकी बात अभी हमने की, शिक्षा के लिए विद्यालय से पहले ही खेल खेल में तैयार किया जाए, से विशेषज्ञ डोमेन स्पेसिफिक विश्वविद्यालय खोले गए हैं, वह एक बात है। लेकिन रेगुलेशन भारत में एक समस्या थी, और ये माना जाता था या ये घटित हो गया था कि जो भी नियंत्रक नियामक आयोग हैं या परिषदें हैं, वह अपने आप में भ्रष्ट निकाय बन गए थे, क्योंकि पारदर्शिता नहीं थी। इसलिए एक तरफ अभी हेकी जो जल्दी ही आएगा, यूजीसी का स्थान लेगा और बहुत सारी परिषदों का स्थान लेगा, लेकिन 2020 में ही भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर भारतीय चिकित्सा आयोग या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग लाया गया, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन में इतना ज्यादा रेगुलेशन था, जैसे लॉ एजुकेशन में भी है लगभग। तो यहाँ संरचनात्मक सुधार तो ये हुआ कि 4 स्वायत्त बोर्ड बना दिए, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि एथिक्स भी उस रिसर्च के लिए भी आवश्यक है और शिक्षा के लिए भी आवश्यक है। और इसके साथ साथ शिक्षक संकाय से की योग्यता से जुड़े हुए जो नियम थे उनको भी अपडेट किया गया है, और वहीं से जो सुधार आरंभ हुए, तो मेडिकल कॉलेजेस में सीटों की पारदर्शी विधि प्रक्रिया, यानी आप नीट के माध्यम से एकीकृत हो गए, साथ ही साथ पारदर्शी प्रवेश व्यवस्था हो गई, क्योंकि आपको पता है आपका कौन सा स्थान है, आपने कहाँ अप्लाई किया है, एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इज सपोज टू पुट इट ऑन देयर बोर्ड, पुट इट ऑन देयर वेबसाइट। तो यह भविष्य के लिए इसलिए बहुत सुंदर है कि भारत का बच्चा कहीं यूक्रेन भागता था, कहीं चीन भागता था, कहीं और किसी विदेश में भागता था, क्योंकि यहाँ मेडिकल सीट्स उसके लिए उपलब्ध नहीं थी। तो मेडिकल सीटों का बढ़ना दो प्रकार से उत्तम है। एक, जो बच्चा यहाँ चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, चाहती है, उसको यही अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, और जो भारत के विभिन्न चिकित्सालयों में चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है या टीचर, मेडिकल टीचर्स उपलब्ध नहीं थे, वह भी अब उपलब्ध होंगे।
1: भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ उठाने के लिए स्किल इंडिया, जिसे हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहते हैं, PMKVY 4.0 की शुरुआत हुई है इस देश में, और उसके तहत हम देख रहे हैं कि आज के समय की जरूरत के अनुसार AI, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी फ्यूचरिस्टिक स्किल्स में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। स्किल और रोजगार के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है, और जब से ये योजना शुरू हुई है करोड़ों युवाओं को इससे प्रशिक्षित किया जा चुका है। और सुषमा जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कौशल से जुड़े विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, युवाओं में उनको स्किल्ड बनाने में, उनको खुद का व्यवसाय शुरू करने में, नौकरी खोजने की बजाय नौकरी देने में इसकी कितनी बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं?
0: जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत को विकसित बनाने के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है, और शिक्षा का महत्व ये है कि अगर जब तक उसके हर सिटीजन ट्रूली ग्लोबल सिटीजन ना बने, कि शिक्षा यहाँ ग्रहण करे और हर जगह उसकी वैल्यू हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका विजन भी यही था कि एक तो अपनी मदर टंग में शिक्षा प्रदान करनी, उस पे फोकस था, दूसरा इंडियन इथॉस में रूटेड हो हमारा एजुकेशन, और तीसरा हर सिटीजन को एक ट्रूली ग्लोबल सिटीजन बनाना। तो स्किलिंग बहुत जरूरी एस्पेक्ट था, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड आपने बात करी, भारत का एक एडवांटेज है, बहुत मेजर एडवांटेज है, और जब तक उसके युवा शिक्षित नहीं होंगे, स्किल्ड नहीं होंगे कि वर्ल्ड पावर के साथ जो बाकी देशों के युवा हैं उनके साथ कंपीट करने के लिए, जब ट्रूली ग्लोबल नहीं होंगे तो वो

0: कम्पीट नहीं कर सकते। तो इसलिए स्किल यूनिवर्सिटीज, अगर आपको याद हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में एक स्किल डिपार्टमेंट, एक स्पेशल अलग बनाया, जिसमें युवाओं को स्किल करने के लिए, जैसे पहले हमारे हायर लेवल पे IITs होती थी स्किल करने के लिए, IIMs थे, लोअर लेवल पे ITIs वगैरह थी और पॉलिटेक्निक्स थे। तो उसके अलावा अब स्किल यूनिवर्सिटीज भी बन रही हैं। और जैसे एम्स की बात करी कि वो हेल्थ एजुकेशन में, अब एम ये है कि हर स्टेट के पास एक एम जरूर हो, एक एटलीस्ट हो। 12 या 14 निर्माण हो चुके हैं एम्स, एक से शुरू करके, सिमिलरली हर स्टेट के पास होगा। सो स्किल यूनिवर्सिटीज में भी स्पेसिफिक फील्ड्स में, जैसे हायर एजुकेशन की हमने बात करी, तो स्किल प्रदान करने के लिए युवाओं को इवन पॉलिटेक्निक्स और ITIs जो थे उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो बहुत सारा फोकस जो है वो स्किलिंग पे लग रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एजुकेशन इज कंटिन्यूअसली वर्किंग इवन विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया जा रहा है, सो दैट द यूथ बिकम एम्पावर्ड विद ग्लोबल स्किलिंग स्किल्स।
1: सुषमा जी, एक सवाल परीक्षा पे चर्चा से जुड़ा भी। परीक्षा की जब भी हम बात करते हैं, परीक्षा की चर्चा करते हैं, तो 2 दशक पहले के भारत में जब मैं विद्यार्थी था तो घर का माहौल ऐसा हो जाता था कि पता नहीं घर में क्या हो गया है। टीवी ऑन होना बंद हो जाते थे, अगर कोई मेहमान आने वाले हैं तो बता दिया जाता था कि अभी परीक्षा चल रही है बच्चों की, आप थोड़े समय बाद आइए। घर में शोर शराबा नहीं होता था। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की, खुद बच्चों से बात करते थे, खुद उनके अभिभावकों को बताते थे, और कुल मिलाकर एक माहौल तैयार किया गया कि परीक्षा डर का मामला नहीं है, इसे आप एक त्योहार की तरह देखिए, एक उत्सव की तरह देखिए, अगर उसमें आप नाकाम हो भी जाते हैं तो सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, जीवन में बहुत सारे अवसर हैं। इस बदलाव से बच्चों के मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस में बहुत परिवर्तन आया, अभिभावकों को भी बातें समझ में आई। कैसे देखते हैं बच्चों के मनोविज्ञान के नजरिए से, उनके विकास के नजरिए से और सामाजिक परिवर्तन के नजरिए से कितना बड़ा बदलाव आप मानती हैं परीक्षा पे चर्चा को?
2: जी, सबसे पहले तो इसकी जो खूबसूरती है या सौंदर्य है वो ये है, प्रधानमंत्री स्वयं बच्चों से बात करें, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रधानमंत्री से बात करने का, संवाद करने का अवसर मिल रहा है। तो राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व के साथ वो बात करते हैं, सीधा संवाद करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, शिक्षक करते हैं, अभिभावक करते हैं, और इसको एग्जाम वॉरियर्स अभियान भी उन्होंने आरंभ में चलाया। ये मुझे लगता है बहुत ही समीचीन था और सामयिक भी था, क्योंकि एक समय ऐसा आया, बिल्कुल सही है, मैं भी उसी समय की उपज हूँ, जब आपने कहा टेलीविजन भी बंद, घर में मेहमानों का आना भी बंद, कमरा भी बंद, और बच्चे के लिए जैसे सजा हो उसे एक एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और अधिक से अधिक मार्क्स लेने, उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं, और एक एग्जाम ना हुआ ऐसा लगता था जैसे जीवन वहीं रुक गया है, और वहीं रुककर उसको सफलता ही हासिल करनी है, उसके बाद उसका दरवाजा खुलेगा। उसमें बहुत बड़ा बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के संवाद से आया है, और इसे आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण अब तक, 9वां संस्करण 2026 में हुआ था, उसमें इतने पंजीकरण हुए, और सहभागिता भी बहुत बड़ी है, क्योंकि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, अलग अलग श्रेणियों में पंजीकरण कराते हैं, और उद्देश्य भी यह है परीक्षा के तनाव को कम करना। यहाँ मैं विशेष तौर पर एक आंकड़ा लेना चाहती हूँ कि हमारे देश के यदि विद्यालयों के आंकड़े हम लें तो विद्यार्थी माध्यमिक स्तर तक तो एनरोलमेंट 88.5% है, लेकिन 9वीं से 12वीं तक ये घटकर 56.4% हो जाता है। मुझे लगता है कि इनको भी एड्रेस करना अवश्य ही माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य रहा होगा, ताकि जीवन के प्रति, परीक्षा के प्रति, अंकों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो और तनाव कम हो, तो व्यक्ति अपने आप अवसर देखने लगता है, खोजने नहीं पड़ते पर उसको प्राप्त कर सकेंगे।
1: संजीव जी, आखिर में परीक्षा पे चर्चा का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा स्ट्रेस को कम करना, और कहीं ना कहीं उससे जो परिणाम हमें देखने को मिले वो बहुत शानदार रहे। संक्षेप में, कार्यक्रम में समय कम है, क्या बताएंगे आप?
0: जी, ये जो परीक्षा पे चर्चा जो प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इनिशिएटिव शुरू किया, इसका पर्पस मेनली यही था कि हाउ टू अप्रोच एग्जाम्स इन अ स्ट्रेस फ्री एंड इजी मैनर। सो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ और पेरेंट के साथ, मैं आपको बता दूं कि टोटल इस इनिशिएटिव के साथ अभी तक टोटल 4.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी, यू नो, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स जुड़ चुके हैं। 4.2 करोड़ तो स्टूडेंट्स ही हैं, 25 लाख टीचर्स

0: हैं, 6 लाख पेरेंट्स हैं, और पहला संस्करण इसका 16 फरवरी 2018 को हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसमें काफी पहलू उठाए। फॉर एग्जाम्पल, 1 2024 में उन्होंने इस पे बहुत इंपॉर्टेंटली बच्चों को यह भी बताया कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए रीलें देखने में, और हैव एनफ स्लीप, नींद बहुत जरूरी है ताकि अगले दिन फ्रेश होके अपना एग्जाम दे सके। उन्होंने पहले एक बारी पबजी का भी, जो बहुत क्रेज की तरह बच्चों में फैल चुका था, बाद में तो गेम बैन हो गई, लेकिन पबजी के बारे में भी मेंशन किया कि वो बच्चे नहीं उसमें करें। सो ये जो इनिशिएटिव था, बेसिकली बहुत स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसके साथ अपने अनुभव भी उसके साथ जोड़ देते हैं।
1: तो श्रोताओं, शाला प्रवेश उत्सव से शुरू हुई प्राथमिक शिक्षा की एक छोटी सी चिंगारी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत और गतिशक्ति विश्वविद्यालय जैसे वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। गुजरात के दूर दराज के गांव में ड्रॉपआउट रेट कम करने के लिए एक संकल्प से लेकर आज 145 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत 2047 के सपने तक, ये यात्रा सिर्फ योजनाओं की नहीं बल्कि सोच के परिवर्तन की यात्रा है। जब देश का शीर्ष नेतृत्व शिक्षा को केवल कागजी डिग्रियों तक सीमित न मानकर हर बच्चे के आत्मविश्वास, उसके मानसिक स्वास्थ्य, उसकी मातृभाषा और उसकी कुशलता से जोड़ता है, तब जन सेवा की यही भावना वास्तव में एक स्वर्णिम देश सेवा का रूप ले लेती है। चर्चा में शामिल होने के लिए संजीव जी आपका और सुषमा जी आपका बहुत बहुत आभार।
0: जी बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 12वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: हुणे तुसी सुन रहे सी जन सेवा से देश सेवा। तुसी जुड़े हुए हो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र दे नाल।
4: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवें प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ये जलंधर केंद्र है। ते आओ हुण सुनदे आं विविधा दे तहत व्यंग वार्ता, अब दिल भी प्रदूषित होने लगा, वार्ता करने प्रेम विच।
5: सुबह सुबह शर्मा जी अखबार लेकर बरामदे में बैठे थे। अखबार के पहले पन्ने पर प्रदूषण की खबर थी। शर्मा जी ने चश्मा ठीक किया और ज़ोर से बोले, वर्मा जी लगता है अब हवा में सांस लेना भी महंगा पड़ने वाला है। पास ही चाय पी रहे वर्मा जी बोले, हवा की चिंता छोड़िए शर्मा जी, आजकल तो आदमी के दिल में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। शर्मा जी ने अखबार नीचे रखा। दिल में प्रदूषण, ये कैसी नई बीमारी है? वर्मा जी मुस्कराए, बीमारी पुरानी है, बस अब पहचान में आने लगी है। शर्मा जी ने पूछा, मसलन? वर्मा जी बोले, पहले आदमी के दिल में प्रेम, दया, करुणा और इंसानियत रहती थी, अब वहाँ ईर्ष्या, स्वार्थ, लालच, अहंकार और दिखावे ने फ्लैट खरीद लिया है। शर्मा जी ने गहरी सांस ली। तो फिर दिल की सफाई कौन करेगा? वर्मा जी बोले, नगर निगम से पूछिए, आकर हर तरह की सफाई

का ठेका उन्हीं के पास होता है। दोनों हंस पड़े। तभी शर्मा जी के मोबाइल पर संदेश आया। उन्होंने देखा एक परिचित ने सोशल मीडिया पर अपनी नई कार की तस्वीर डाली थी। वर्मा जी ने पूछा, किसकी कार है? मिश्रा जी की। अरे अभी तो पिछले साल ही कार खरीदी थी। शर्मा जी बोले, लेकिन इस बार नई कार है। वर्मा जी तुरंत बोले, फिर तो धूल में प्रदूषण का बढ़ना स्वाभाविक ही है, क्योंकि अब मिश्रा जी की कार देखकर मोहल्ले के आधे लोगों के दिल में जलन का धुआं उठेगा। उसी रात शर्मा जी को एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि उनका दिल बाबू उनके सामने खड़ा है। वो दिल बाबू बहुत नाराज थे। शर्मा जी ने पूछा, क्या हुआ? दिल बाबू बोले, क्या हुआ, मेरी हालात देखिए, आपने मुझे दिल कम और कूड़ेदान ज़्यादा समझ लिया है। शर्मा जी घबरा गए, मैंने क्या किया? दिल बाबू बोले, सुबह ईर्ष्या डालते हैं, दोपहर में क्रोध और शाम को अहंकार और रात को दूसरों की सफलता देखकर जलन, ऊपर से सोशल मीडिया की अफवाहें अलग। शर्मा जी बोले, लेकिन ये सब तो समाज में है। दिल बाबू बोले, तो क्या हर चीज़ घर में लाकर रखनी जरूरी है? शर्मा जी चुप हो गए। दिल बाबू ने आगे कहा, पहले मेरे अंदर प्रेम रहता था, अब लोग मुझे बैंक लॉकर समझ कर रखते हैं। किसे कितना प्रेम देना है पहले हिसाब लगाते हैं। शर्मा जी ने पूछा, तो आपको चाहिए क्या? दिल बाबू बोले, थोड़ी इंसानियत, थोड़ी करुणा और थोड़ा कम स्वार्थ। शर्मा जी बोले, इतना ही? दिल बाबू बोले, हाँ, बाकी जगह तो आपने पहले ही अहंकार से भर रखी है। अगले दिन शर्मा जी ने सोचा कि दिल बाबू की शिकायत गंभीर है। वे शहर के प्रसिद्ध हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर दिलेश्वर जी के पास पहुंच गए। डॉक्टर ने पूछा, क्या तकलीफ है? शर्मा जी बोले, डॉक्टर साहब, मेरा दिल प्रदूषित हो गया है। डॉक्टर ने चौंक कर पूछा, कोलेस्ट्रॉल? नहीं। ब्लड प्रेशर? नहीं। फिर? शर्मा जी बोले, दूसरों की सफलता देखकर जलन होती है। डॉक्टर ने तुरंत पर्ची पर लिखा, सुबह शाम किसी की सफलता पर खुशी व्यक्त करो। शर्मा जी ने पूछा, दवा कितने दिन लेनी है? डॉक्टर बोले, उम्र भर। शर्मा जी ने अगला सवाल किया, इससे कोई सस्ती दवा नहीं है? डॉक्टर बोले, हाँ, क्या? दूसरों से तुलना करना बंद कर दीजिए। शर्मा जी बोले, डॉक्टर साहब, ये दवा तो महंगी है। क्यों? क्योंकि इसे लेने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आपका केस गंभीर है। उसी समय अस्पताल में नेताजी भी आ गए। डॉक्टर ने पूछा, क्या परेशानी है? नेताजी बोले, मेरा दिल जनता के लिए बहुत धड़कता है। डॉक्टर ने कहा, बहुत अच्छी बात है। नेताजी बोले, चुनाव आने वाले हैं, इसलिए धड़कन कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर ने पूछा, चुनाव के बाद? नेताजी ने धीरे से कहा, फिर दिल आराम करेगा। शर्मा जी ने पूछा, जनता का क्या होगा? नेताजी बोले, जनता भी 5 साल आराम कर लेगी। डॉक्टर ने माथा पकड़ लिया। दिल बाबू को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शर्मा जी से कहा, देखा, राजनीति में मेरा सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है। वापसी में शर्मा जी की मुलाकात सोशल मीडिया बाबू से हुई। सोशल मीडिया बाबू बोले, आजकल दिल की असली पहचान क्या है जानते हो? शर्मा जी बोले, प्रेम।

0: नहीं करुणा, नहीं फिर लाइक। उन्होंने मोबाइल दिखाया, देखिए मेरी पोस्ट पर 500 लाइक हैं, मतलब 500 लोग मुझसे प्रेम करते हैं। शर्मा जी ने पूछा, इन 500 में से कितने आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? सोशल मीडिया बाबू चुप हो गए। कितने आपके दुख में आपके पास आए? वे और चुप हो गए। कितनों ने आपका हाल पूछा? आप वो मोबाइल देखने लगे। शर्मा जी बोले, तो फिर ये 500 लाइक नहीं, 500 डिजिटल थपकियां हैं। सोशल मीडिया बाबू बोले, लेकिन दिल को तो अच्छा लगता है। दिल बाबू बोले, हाँ लेकिन मेरा पेट लाइक से नहीं भरता, मुझे सच्चे रिश्ते चाहिए। घर लौटकर शर्मा जी ने देखा कि दो भाई आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। कारण 5 फुट जमीन। एक भाई बोला, वह 5 फुट मेरी है। दूसरा बोला, नहीं मेरी है। शर्मा जी ने कहा, तुम दोनों के पिता ने ये जमीन छोड़ी थी या दुश्मनी? दोनों चुप। शर्मा जी बोले, 5 फुट जमीन के लिए 25 साल का रिश्ता मत गवाओ। एक भाई बोला, लेकिन मैं झुकूं क्यों? दूसरा बोला, मैं क्यों झुकूं? दिल बाबू ने सिर पकड़ लिया, बस यही तो समस्या है। और जमीन 5 फुट किया है और अहंकार 50 फुट का। अगले रविवार शर्मा जी ने मोहल्ले में एक नया अभियान शुरू किया, स्वच्छ दिल अभियान। उन्होंने घोषणा की, जिसके घर में दिल प्रदूषित है वह मेरे पास आए। वर्मा जी बोले, पहले ये बताइए कि दिल का कचरा कहाँ डालोगे? शर्मा जी बोले, जिसके कारण दिल में कचरा है उसे वहीं वापस डाल देंगे। वर्मा जी बोले, तो फिर मोहल्ले में युद्ध हो जाएगा। शर्मा जी बोले, ठीक है फिर कचरे को खाद बना लेते हैं। इसलिए अब जरूरत है स्वच्छ हवा की, स्वच्छ पानी की, स्वच्छ पर्यावरण की। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्वच्छ दिल अभियान की, क्योंकि जब दिल साफ होगा तो रिश्ते साफ होंगे, रिश्ते साफ होंगे तो समाज साफ होगा, और जब समाज साफ होगा तो हाँ शायद हर बात पे सफाई अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर कोई आपसे कहे मेरा दिल बिल्कुल साफ है, तो उसकी बात पे विश्वास मत कीजिए। पहले ये देख लीजिए कि कहीं उसके दिल में साफ होने का अहंकार तो जमा नहीं है।
1: ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਵਧਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅੰਗ ਵਾਰਤਾ। ਅਬ ਦਿਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣੇ ਲਗਾ, ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ।

0: पापा दी उमर पार दी कमाई उना दी सिख्या
1: अते हमेशा साड़ी फिकर करना।
2: वैसे उना दी एक जमा पूंजी बैंक विच भी है,
0: पर क्लेम करना मुश्किल होवेगा।
3: हुण होर भी आसान हो गया है। बैंक दी वेबसाइट जा शाखा ते जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, दस्तावेज जमा करो, 15 दिनां च रकम प्राप्त करो, अते नॉमिनी नाल क्लेम दा निपटारा होवे होर भी आसान।
4: मिनिमम 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते तुसी जुड़े हुए हो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र दे नाल। ते आओ हुण सुनदे आं पंकज उदास दा गाया एक गीत जिन्हों लिया गया फिल्म साजन दे विच्चों।

तुसी सुन रहे सी लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर द गाया एक गीत जिन्हों लिया गया सी फिल्म प्रेम रोग सो। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी का ही जलंधर केंद्र है। आओ सुन रहे हैं जन सेवा तो देश सेवा तक इस बाबत साडा एक विशेष प्रोग्राम और जिदा विषय है खेल महाकुंभ तो खेलो इंडिया।

0: खेलेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया। साडे माणयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दे खेड दे लई दित्ते इस नारे ने पूरे देश विच खेड अंदोलन नूं वधावा दित्ता है। माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां दी अगवाई विच पिछले दो दहाकियां तों देश ने खेड इतिहास का सुनहरी दौर महसूस किया। यह सफर गुजरात की धरती तो शुरू होया सी, जिसका आगाज माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां ने गुजरात विच साल 2010 विच खेल महाकुंभ के रूप में शुरू किया, जदों वह गुजरात के मुख्यमंत्री सन। पहले खेल महाकुंभ विच 13 लाख खिडारी इहदा हिस्सा बने, पर समय के नाल नाल यह आंकड़ा 50 लाख भी पार कर गया सी। गुजरात के नौजवानों ते मुटियारां विच खेड मैदानां दे प्रति जनून पैदा होया। माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां दी अगवाई विच देश विच खेडां प्रति रुचि वधी है। भारतीय बॉक्सिंग फैडरेशन दे वाइस प्रेजिडेंट राजेश भंडारी महसूस करते हैं कि पिछले सालों तो बॉक्सिंग दे प्रति भी नौजवानों ते मुटियारां दा रुझान वधिया।
1: मैं 1970 से लेकर बॉक्सिंग खेल रहा हूँ, एक खिलाड़ी के रूप में भी, और 80 के बाद एक कोच और एक प्रशासक के रूप में भी मैं खेलों में हूँ। तो मैंने उस वक्त देखा कि हमारे वक्त में खेलों के प्रति लोगों का इतना रुझान नहीं होता था, और खासकर बॉक्सिंग का खेल तो ऐसा खेल था कि जिसमें के लोग जाते हुए भी डरते थे, खासकर पेरेंट्स भी। मैं अपनी बात करूंगा तो हम लोग बड़ी मुश्किल से परमिशन मिलती थी बॉक्सिंग खेलने की, क्योंकि खेलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती थी, अवेयरनेस नहीं थी लोगों की, और ना ही उस वक्त की जो सरकारें थी और साधन सीमित होते थे। लेकिन मैं आज देखता हूँ कि खेलों के प्रति जिस तरह से जो हमारी भारत सरकार है उन प्रोत्साहित कर रही है। हमारे वक्त में बजट नहीं होता था, हम लोग नंगे पांव खेलते थे, घर से खर्चा करके जाते थे, लेकिन आज सरकार की ओर से पूरी, खासकर भारत सरकार की ओर से पूरी सुविधाएं दी जा रही है। खेलों के प्रति हम लोग काफी जागरूक है, बच्चों को भी जागृत कर रहे हैं कि खेलों के क्या फायदे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है भारत सरकार का खेलो इंडिया का। मैं तो ये कहूंगा कि हमें ये खेल पंचायतों को जरूर इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे पंचायतें जो काम कर सकती हैं, स्कूल जो काम कर सकते हैं, वो दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती है।
0: माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां दा मानना है कि खेडां दे नाल ही देश की जवानी आबाद होएगी, तंदुरुस्त होएगी, देश नूं विकास दीआं राहां ते तुरेगी। इसे लई साल 2017-18 विच एक इतिहासिक योजना की शुरुआत हुई, जिसका नाम रखा गया खेलो इंडिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ते खेलो इंडिया विंटर गेम्स राही हजारां लखां नौजवानों नूं अपना हुनर विखाउण दा मौका मिलिया। इस योजना तहत चुने गए होनहार खिडारियों नूं हर साल 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता 8 साल के लिए दी जाती है, ताजो वह बिना किसी आर्थिक तंगी दे अपनी ट्रेनिंग कर सकन। कुश्ती दे राष्ट्र पद्धर दे कोच विक्रम शर्मा ये मानते ने कि खेलो इंडिया गेम्स ने ते होर खेड नीतियां ने पहलवाना दे हुनर नूं निखारन विच बहुत वड्डी मदद कीती है।
2: सब तो पहले तो मैं तुहानूं दसना चाहवांगा कि जिहड़ी खेलो इंडिया स्कीम आ, इहदे विच वी काफी स्कीमां ने, जिस तरह अखाड़ा स्कीम भी एक इहदे विच हैगी आ कि जिस तरह पूरे हिंदुस्तान दे अखाड़िआं दे विचों जिहड़े बच्चे आ उहनां नूं स्कीमां दित्तीआं गईआं, जिस तरह 1000 रुपया पर मंथ, 20,000 रुपया सालाना किट, फिर जो कि टूरनामेंट तो जाता है बच्चा तो वह खर्चा देती है गोरमेंट, फिर वो अलावा अखाड़े में जोड़ा इक्विपमेंट जो गोरमेंट देती है, फिर ये जेडे खेलो इंडिया जी टूरनामेंट अलग तो कराए जा रहे, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स भी हो रही, यूनिवर्सिटी गेम्स भी हो रही, खेलो इंडिया गेम्स अलग तो अलग हो रही, तो ओदा सानू काफी कुछ बेनिफिट होया कि जिस तरह कई प्लेयर्स टूरनामेंट नहीं सी इन्ने मिल रहे, एक तो टूरनामेंट उन्होंने ज्यादा मिलने शुरू हो गए, दूसरा उन्होंने जिस तरह कि घर घर जिस तरह पिंड पिंड दे विच पहलों मैट नहीं सी हुंदा, हुण मैट जिहड़ा पहले एक जिले च एक अद्धा मैट ही हुंदा सी।

0: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 8:45 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9 ਅਤੇ 9:15 ਸਪੋਟਲਾਈਟ। ਬਸ ਕੁਝ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान, प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा।

0: 4772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलबीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: Annually, we have been meeting regularly.
3: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
2: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
4: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर News on AIR Official को सब्सक्राइब करें।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
1: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
2: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
1: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
3: So if you want to make more export,
4: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
0: 1 year before. सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
5: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
6: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बंटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय। ये जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण

0: किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
1: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
0: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
2: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा, ड्राइवर भाई, सारथी भाइयों से, कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो विजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
0: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबद्ध संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for stronger mechanism to combat terrorism, launches new extradition portal. India and UAE agree to implement initiatives for trade in local currency. Aim to boost bilateral trade to $200 billion by 2032. Central teams to visit Karnataka and Maharashtra to assess drought situation. Government launches Pashudhan Bima portal to streamline livestock insurance claims and monitoring. Non-stop flight between India and Mongolia takes off. Sensex

0: पैरी पहना बीजी।
1: हाय मेरे पुत आ गया था। मैं सबके मेहमानी जावा अपने लाडले तो। ठहर पुत ठहर, मैं तेल चुआ के बूहे तो नगावा। सुख नाल मेरा पुत पढ़ाई पूरी करके आया।
0: बीजी तो बस करो बीजी, की करी जान दे। बापू जी नहीं दिसते किते, ये अपना छोटू नहीं दिखाई देंदा, किथे गए सारे
1: पुत्र? इन्होंने ते किथे जाना, तेरा बापू खेतां च होना ते दलीपा बच्चियां नाल खेड़दा होना किते।
0: अच्छा बीजी, मैं भी चलदा खेतां नूं, जाके माहौल देखा खेतां दा। साल तो उपर हो गया खेतां च पैर तरिया।
1: आ ले पुत्र, पहला चाह पी लै, फिर चलदे आ। मैं भी चलदी आ तेरे नाल।
0: बीजी तुसी करदा काम कार करो, मैं कल्ले चला जाऊंगा, छोटा बच्चा मैं। ठीक है, चलदा मैं खेतां नूं।
1: चंगा।
0: हरी बना बापू जी।
2: ओए आओ मेरे शेर पुत्रा, बल्ले बल्ले जूना वासा रे। वे बढ़िया बढ़िया उम्र हो, शाबाश है जवानियां माने, आजा जरा छाती ने लग बैठ जा मेरे कोले। अच्छा अभी और सुना, तेरी सेहत तो ठीक है?
0: ठीक है जी, बिल्कुल।
2: पढ़ाई पूरी हो गई?
0: बापू जी पढ़ाई तो फर्स्ट क्लास पूरी हुई है।
2: वाह,
0: ते सेहत तोडे सामने है। ओ मुंडे किथे अपने?
2: ओ वेखो पुत्रा उधर देख। ओए सानी, ओ लक्ष्मण, ओए राजू, ओए इधर आओ, देखो कौन आया।
3: ओ होने आ सरदार जी, होने आ।
2: आ जाओ।
3: हैं? हां। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, भई ये तो साले छोटे सरदार जी ने।
0: किदा भई मड़े हो?
3: ठीक है जी, ठीक है। सत श्री अकाल छोटे सरदार जी।
0: सत श्री अकाल, सब ठीक ठाक है?
3: हां बिल्कुल ठीक है जी। ए सरदार जी, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ,
3: ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ।
0: ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਈ, ਜ਼ਰੂਰ।
2: ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਪੁੱਤਰਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮੋ।
3: ਹਾਂਜੀ।
2: ਓਏ ਕੱਲ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ।
3: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
2: ਸੁਣਿਆ?
3: ਹਾਂਜੀ,
2: ਚਲੋ ਵੀ ਆਓ ਫਿਰ।
0: ਚੰਗਾ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ।

0: महेंद्र नूं गया 6 साल हो गए, ना कोई चिट्ठी ना कोई पत्र ना टेलीफोन, पता नहीं रब नूं की मंजूर है।
1: आ लो चाह पियो, एवें ना इधर उधर दियां सोची जाओ, रब जो करदा चंगा ही करदा है, एवें सानू ही माड़ा लगता है। बस उठ के खेतां वल गेड़ा मारो, तुहाडा मन कितें उधरे पै

0: पुत, एक खुशखबरी साडे वालों भी है। तेरा वीरा भी वापस आ रहा है इस हफ्ते। हुणे ओदी चिट्ठी आई है।
1: सच्ची? ये तो बड़ी खुशी दी गल है।
2: ओए आप ही गल्ला करदी रहेंगी कि मैनू भी?
0: तेरा बापू बाजा मारदा पिया। दिलीपे दे बापू आई मैं।
3: कौन सी?
0: सिमरन पुत्र।
3: की कहंदा सी मेरा पुत्र?
0: कहंदी सी गुरमुख वापस आ रहा इंडिया।
3: वाह वाह, दोरे खुशखबरियां दी गप्पे, ये तो बड़ी चंगी गल है। 16-17 साल हो गए बेचारी नु उलीक कर दिया। शुक्र हो रबा तेरा। हाँ, सुनी गई।
0: सियाने ने एवं नहीं आख्या कि रब दे घर देर है अंधेर नहीं। ओदे रंगां दे किसे ने भेद नहीं पाया। एडी लम्मी उडीक, पता नहीं केड़े जन्मां दी सजा भुगत रही सी मेरी बेटी।
3: चल बचन कोरे, देर आए दुरुस्त आए। उलीक दियां कड़ियां हुन खत्म, संताप दे दिन कटे गए। चल फिर तो नवे सुपने सिर जिए, बच्चियां दे सोने भविख दे।

0: 2026 आईजी नगोया।
1: खेलों में बड़ी चीज है खेल भावना, लेकिन जो चीज खेलों में रोमांच, उत्तेजना, आह्लाद और उत्साह भरती है वो है जीत की ललक। खिलाड़ी मैदान पर जयघोष का सपना लेकर ही उतरता है और जितना बड़ा मंच उतनी बड़ी भूख, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। एशिया के सबसे बड़े खेल मेले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय रणबांकुरों ने क्या क्या किया, हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं। और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक, गुलवीर और मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीते, पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह का जलवा, रजत पदक पे निशाना, कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी, क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत

0: सेमीफाइनल में और बॉक्सिंग में तीन और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश आज भी अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली शिशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी लगा हो कि स्पर्धा का ग्लैमर और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसे गलत साबित किया नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित यादव ने। पहले चक्र में यशवीर 84.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर। तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए, लेकिन चौथे थ्रो में रुमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा। लास्ट थ्रो 88.56, तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर और रजत पदक पक्का कर दिया। तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली शिशंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की दूरी फलांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओ शी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हंगचाओ खेलों की 5000 मीटर की चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी। उन्होंने दम तो बहुत लगाया, लेकिन 15:14.16 सेकंड के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहा है वो है डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह। भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में 3:37.92 सेकंड के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज ने 54.75 सेकंड के साथ कांस्य पदक पाया, लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने और अनु राघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला। लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेस में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश साबले का। 4थे स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से, 8:21.67 सेकंड समय लिया। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष टी के 7वें स्थान पर रहे, तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल बेस्ट निकाला 59.88 मीटर, लेकिन पदक नहीं ले पाई। 4थे स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारती चौकली 4थे स्थान पर रही, तो 4x100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हिट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाल कर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गई। शूटिंग में पदक तो आए हैं, लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी। ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
1: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, स्टार शूटर ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक 5 शूट-ऑफ का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुख सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थी। इसके बाद आया निर्णायक शूट-ऑफ जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट-ऑफ में हुआ, लेकिन ईशा का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। लगातार दबाव के बीच 5 शूट-ऑफ तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही, जबकि अनुभवी राही सरनोबत 30वें स्थान पर रही। टीम इवेंट में ईशा, मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि शूटिंग रेंज में भारत के पदक की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत 84 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल 3रे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर हैं। भारतीय पुरुष टीम 5वें

0: स्थान पर है, लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 पदक हो चुके हैं।
1: मध्य एशिया में करीब 3,500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी, जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का दूसरा पदक हासिल किया। बता रही हैं विदुषी वत्स।
2: गोइंग टू द कुराश एरिना वेयर पिंकी बलहारा हैज सिक्योर्ड ब्रॉन्ज इन द वुमेन्स अंडर 78 किलोग्राम कैटेगरी। पिंकी वॉज इन एक्शन इन द सेमीफाइनल टुडे अगेंस्ट साउथ कोरियाज मो सुमिन एंड द बाउट एंडेड 5-0 इन द फेवर ऑफ द Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarterfinal, booking her place in the semi-finals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is only India's third ever Asian Games medal in the sport, and it is particularly

0: Today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarter-final, booking her place in the semi-finals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian courage. Pinky's medal is only India's third ever Asian Games medal in the sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at 2018 Asian Games, while at the 2022 Games, her campaign ended in the quarter-finals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday, four of our other Indian courage athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the courage arena.
1: भारतीय बॉक्सर्स के मुक्कों में दम तो है, बार बार ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आईची नगोया में भी कर रहे हैं। कल तीन ने पदक पक्के कर दिए थे तो आज भी तीन मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में तीन मेडल पक्के हो गए। जी हां, बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक तीन मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की स्वांग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना समादोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम गिचाए को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए तीसरा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दें, बीते कल भी तीन मुक्केबाजों पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग रिंग से दो दिन में भारत के लिए पदकों की दो हैट्रिक लगी। अब ये सभी 6 मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
1: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज चार धनुर्धर लक्ष्य भेदने मैदान में थे। ड्रॉ कुछ ऐसा निकला कि दो आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
0: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक्ड हिज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग quarter-final encounter. It was an extremely close contest with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the All Indian battle by just 1 point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venom got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145 and move into the round of 16. But the next challenge was a tough one in the round of 16. Jyoti came up against Korea's Kang Yoon Seo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150. That brings her individual campaign to an end here. Now the focus shifts to Chikita Taniparthi. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that contest comfortably, winning 149-140. Then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot off. She survived this shoot off and she's through to the quarter finals.
1: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। पिछले 4 मैचों में 39 गोल कर चुकी है। पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एकता थामी से सुनिए आज का हाल।
3: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी।

0: आजाद की तरफ से शुरुआती गोल तीसरे मिनट में हुआ और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया लेकिन गेंद को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके। भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया।
1: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और उसी दौर की पुनर्वापसी में लगी है हालिया पौध। टेनिस में आज की रिपोर्ट एकता थामी से।
0: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा और अन्ना डानिलिया ने पहले राउंड के मुकाबले में 7-5, 3-6 और 5-10 से हरा दिया। भारत की लड़कियों ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन कजाकिस्तान की महिला ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों के एकल मुकाबले में भारत के सुमित नागल का मुकाबला दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग चान से हो रहा था। पहले सेट में सुमित नागल 3-2 से बढ़त बनाए हुए थे जब वर्षा के कारण मैच रोक देना पड़ा। अब यह मैच कल खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कोरियाई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे।
1: स्क्वाश में पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं खेलों में 3 बार हम देख चुके हैं। आज के अभियान का आकलन एक बार फिर एकता धामी से।
0: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौटरानी ने ली हेईझेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की। तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झों को 11-3, 11-2 और 11-4 से धो डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा। महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की। तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा। जापान के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल का खेल दिखाया और मेजबान जापान को 2-1 से मात देने में कामयाब रही। जोशना चिनप्पा ने शुरुआती मुकाबले में जापान की एरिसा सानो को हराकर शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन उसके बाद अनाहत सिंह की हार ने भारत की मुश्किलें कुछ बढ़ा दी। तीसरे और अंतिम मुकाबले में तन्वी खन्ना ने आकारी मिदोरिकावा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
1: सेपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
2: फ्रॉम वुमेन्स सेपक टाकरा, इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11 बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड, विनिंग इट 15-9 टू लेवल द मैच। द डिसाइडिंग थर्ड सेट वेंट राइट डाउन टू द वायर बट जापान एज्ड इट 15-13 टू सील द विक्ट्री। So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.
1: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं, तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे, कितने पार लगे, दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
0: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासु ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेनसांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार ने चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेवआर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सर्वनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में 9वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ की पहली रेस में 4थे स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र नुमानन पहली क्वालिफिकेशन रेस में 6ठे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में

0: वर्मा और रविंद्र शर्मा शुरुआती श्रृंखला की तीसरी रेस में आठवें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस समय पर पूरी नहीं हो सकी।
1: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत की एक और धमाकेदार जीत, एकता थामी।
0: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि हांगकांग चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।
1: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।
2: At this stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals, and India is currently in 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver and 21 bronze.
1: कल शूटिंग में ट्रैप स्पर्धा का अंतिम दिन है। महिला और पुरुष दोनों में तीन तीन भारतीय शूटर्स हैं। कल से साइकिलिंग की स्प्रिंट स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें कई भारतीय दिखेंगे। स्क्वाश में महिला टीम अपना विजय अभियान आगे ले जाने का प्रयास करेगी। टेनिस में पुरुष एकल, युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे। सेलिंग में कई भारतीय हैं स्किफ और डिंग की स्पर्धा में, तो सर्फिंग में अकेले किशोर कुमार होंगे। आर्चरी में रिकर्व में धीरज बोमदेवरा, नीरज चौहान, कुमकुम और कीर्ति शर्मा रहेंगी। राश में विपिन कुमार होंगे। एथलेटिक्स में 19 पदक आ चुके हैं और ज्यादा की उम्मीद होगी कल। पोल वॉल्ट महिला ऊंची कूद, हैमर थ्रो महिला और पुरुष 800 मीटर, 5000 मीटर में गुलवीर सिंह एक बार फिर मैदान पर होंगे, और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक। एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: मिनियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। तुसी सुन रहे सी हुणे वीवियां एशियन खेडां दियां हुण तक दियां कारगुजारियां साढ़े दिल्ली केंद्र तो। और आओ हुण सुनदे हां कुछ फिल्मी गीत, जिहदी शुरुआत करन जा रहे हां आरडी बर्मन दे गाए इस गीत दे नाल। तुसी सोचोगे कि आरडी बर्मन तां एक संगीतकार सन, लेकिन उन्होंने कुछ गीत भी गाए सन, और ये जिहड़ा गीत सुनान जा रहे हां ना ये उन्हां दी ही आवाज़ दे विच। और फिल्म जड़ी है जी जमाने को दिखाना है, इन्हें लिखिया सी मजरू सुल्तानपुरी ने, और ये उन्होंने एकल गीत है। यानी ये सिर्फ वो साइड वॉयस नहीं दे रहे, यानी कि मेन सिंगर और गायक के रूप च ने। तो आओ फिर सुनिए ये गीत।

0: बात होगी तो
1: वाह
0: उल्फत की फौरन शुरुआत होगी।
2: वाह वाह
0: तो उल्फत की फौरन शुरुआत होगी। कभी तो मिलोगे सरे राह हमसे,
2: क्या
0: कभी तो
2: कहने,
0: मिलोगे सरे
2: सरे राह
0: राह
2: हमसे।
0: हमसे, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी
2: वाह
0: मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और फिर देखिए, बिछड़ने का गम जब था सबसे ज्यादा, बिछड़ने का गम जब
2: जब
0: था
2: था
0: सबसे
2: सबसे
0: ज्यादा,
2: ज्यादा,
0: यकीनन ये उस शाम की बात होगी।
2: ना
0: तुम रह सकोगे जुदा हमसे होकर, ना
2: तुम
0: तुम रह
2: रह
0: सकोगे
2: सकोगे
0: जुदा
2: जुदा
0: हमसे
2: हमसे
0: होकर,
2: होकर,
0: ना तुझ बिन हमारी कोई जात होगी,
2: वाह
0: ना
2: वाह
0: तुझ
2: वाह
0: बिन
2: वाह
0: हमारी कोई जात होगी। और शेर देखिए, जो मेहनत को अपना मुकद्दर बना ले, जो मेहनत को अपना मुकद्दर बना ले,
1: बना ले,
0: उसी शख्स की हर तरफ बात होगी,
2: वाह
0: उसी शख्स की हर,
1: वाह वाह वाह
0: जो
1: वाह,
0: मेहनत को अपना मुकद्दर बना ले
2: जी
0: उसी शख्स की हर तरफ बात होगी।
1: क्या कहने,
0: और शेर देखिए, ना शिकवा करेंगे ना इल्जाम देंगे,
1: आहा,
0: ना शिकवा करेंगे ना इल्जाम देंगे, मुकद्दर में जो है वही बात होगी।
1: वाह वाह वाह वाह
0: और
1: वाह,
0: जो सच बोलने से हमें रोक पाए, यहाँ पर
1: आहा,
0: भला किसकी औकात होगी,
1: वाह
0: यहाँ
1: वाह
0: पर
2: वाह, क्या
0: भला
2: बात,
0: किसकी
2: बहुत
0: औकात
2: अच्छा है,
0: होगी।
2: बहुत अच्छा।
0: और शेर देखिए, सितमगर जमाना भला क्या करेगा,
2: सितमगर
0: सितमगर
2: जमाना,
0: जमाना भला क्या करेगा, दुआ गरचे माँ की तेरे साथ होगी।
1: वाह
2: वाह
1: वाह वाह वाह,
0: जब आओगे संदीप घर तुम हमारे, फिजाओं में खुशबू की बरसात होगी।
1: वाह वाह वाह
0: थैंक
1: वाह।
0: यू।
1: दोस्तों, अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जमाल अहसनी ने कहा था कि जमाल अब तो यही रह गया पता उसका, भली सी शक्ल थी अच्छा सा नाम था उसका, जो मेरे जिक्र पे अब कह कहे लगाता है,
2: जो मेरे जिक्र पे अब कह
1: कह कहे
2: कहे लगाता
1: लगाता
2: है।
1: है, बिछड़ते वक्त कोई हाल देखता उसका।
2: वाह वाह,
1: और जमाल उसने तो ठानी थी उम्र भर के लिए, जमाल उसने तो ठानी थी उम्र भर के लिए, ये चंद रोज में क्या हाल हो गया उसका।
2: वाह वाह,
1: दोस्तों, एक मशहूर और मारूफ शायर, वो भी उनका ताल्लुक भी मलेरकोटला से है, और मैं अब बात कर रहा हूँ जनाब मुकर्रम सैफी साहब की, और यासिर खान इनाम कहते हैं कि बना हुआ था कहीं आबदान कागज पर, थी इतनी प्यास के रख दी जबान कागज पर,
2: वाह
1: किराएदार की आंखों में आ गए आंसू, बनाए बैठे थे बच्चे मकान कागज पर।
2: वाह वाह वाह वाह,
1: हमारे अगले शायर जनाब मुकर्रम सैफी साहब।
3: बहुत बहुत शुक्रिया हमजा बिलाल। मैं आज की इस नशस्त में तरन्नुम में अपना कलाम पेश करने की जसारत करूंगा।
1: जी,

0: तकदीर का मुनकर
1: मोमिन कभी तकदीर
2: क्या
1: का
2: कहना।
1: मुनकर नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हाजिन, अब हम आपके सामने इस खूबसूरत शेरी नशिस्त के रूहे रवां, जो कि इस शेरी नशिस्त की निजामत फरमा रहे हैं, मेरी मुराद है जनाब हमजा बिलाल से, मैं बहुत ही मोदबाना आजीजाना गुजारिश करूंगा कि वो इस प्रोग्राम में अपने जरी कलाम से नवाजें।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकर्रम साहब, और एक मतला एक शेर मुलायजा करें
1: इरशाद,
2: कि हमारी छत पे भी सूरज का इंतजाम हुआ। हमारी छत पे भी सूरज का इंतजाम हुआ, ये और बात की अहकाम वक्ते शाम हुआ।
1: वाह वाह वाह वाह।
2: हमारी छत पे भी सूरज का इंतजाम हुआ, ये और बात की अहकाम वक्ते शाम हुआ, और उठे रकीब तो फिर मुझसे बैठने को कहा।
1: उठे रकीब तो फिर मुझसे
2: बैठने को कहा, तुम्हारी बज्म में यूं मेरा एहतराम। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतलब एक शेर ये भी मुलायजा करें कि शाहजादी को गर कबूल नहीं, शाहजादी को गर कबूल नहीं, फिर ये पत्थर है फूल वूल नहीं। फिर ये पत्थर है फूल वूल नहीं, और ऐसे चंदन का क्या लगाना है,
1: ऐसे चंदन का क्या लगाना है
2: जिसमें प्रीतम चरण की धूल नहीं। जिसमें प्रीतम चरण की धूल नहीं। दो तीन अशार ये भी मुलायजा करें कि जहां मैं बैठा हूं मेरा मकाम है ही नहीं।
1: जहां मैं बैठा हूं मेरा मकाम है ही नहीं।
2: यहाँ पे कोई मेरा हम कलाम है ही नहीं।
1: शेर
2: मुलायजा करें बतौर खास के भला वो कैसे खरीदें के सामने उनके,
1: भला वो कैसे खरीदें के सामने उनके।
2: अजीज मिस्र है अदना गुलाम है ही नहीं। और अजीज मिस्र है अदना गुलाम है ही नहीं, जुदा हुआ तो उदासी ने उसको घेर लिया। रकीब मेरी तरह खुशकलाम है ही नहीं। और ये शेर भी देखें कि हजार बार जिगर चाक कीजिए लेकिन,
1: हजार बार जिगर चाक कीजिए लेकिन
2: हुजूरे मन ये शरीफों का काम है ही नहीं। और मुझे तलाश है फिर से नए ठिकाने की, अब उसके दर पे कोई धूमधाम है ही नहीं। और ये लोग ऐसे मेरे साथ पेश आते हैं,
1: ये लोग ऐसे मेरे साथ पेश आते हैं
2: कहीं भी जैसे खुदा का निजाम है ही नहीं।
3: क्या बात, बेहतरीन, बहुत अच्छा,
2: बहुत शुक्रिया। और दोस्तों अब इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: मैं अपने निजामत के की जो जिम्मेदारी है उस पर वापस आ गया हूँ। खुर्रम आफाक ने कहा था कि बड़ी मुश्किल से नीचे बैठते हैं,
1: बड़ी
0: बड़ी मुश्किल से नीचे बैठते हैं जो तेरे साथ उठते बैठते हैं।
1: वाह वाह
0: और अकेले बैठना होगा किसी को, अकेले बैठना होगा किसी को अगर हम तुम इकट्ठे बैठते हैं।
1: वाह
0: और लो
1: वाह
0: अब उठना पड़ा ना पहली सफ से,
1: वाह
0: लो अब उठना पड़ा ना पहली सफ से, कहा भी था कि पीछे बैठते
1: पीछे
0: हैं। मैं आवाज दे रहा
1: वाह
0: हूं हमारे अहद का बहुत ही मकबूल नाम, बहुत ही मारूफ नाम, जनाब मुअज्जम सैफी साहब। वो भी मलेरकोटला से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने कलाम से हमें नवाजे।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। चंद मुतफर्रक अशआर पढ़ूंगा पहले मैं।
0: जी इरशाद।
1: है शुक्र वो मकाम, है शुक्र वो
0: वो मकाम
1: मकाम जहाँ ख्वाहिशात को, है शुक्र वो मकाम
0: जहां
1: जहाँ ख्वाहिशात
0: ख्वाहिशात
1: को
0: को
1: रब की रज़ा के ऐन मुताबिक करे कोई।
0: वाह वाह वाह वाह वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह, क्या बात है।
0: वाह वाह
1: है
0: वाह
1: शुक्र
0: वाह
1: वो मकाम जहाँ ख्वाहिशात को रब की रज़ा के ऐन मुताबिक करे कोई। और एक मतला एक शेर, सारे मंजर थे जहां तेरी स्ताइश करते,
0: सारे मंजर थे
1: सारे मंजर थे
0: जहां
1: जहां
0: तेरी
1: तेरी स्ताइश करते, क्या मेरे होंठ तेरे सामने जुम्बिश करते।
0: वाह वाह वाह
1: वाह
0: वाह वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह वाह
1: क्या मेरे होंठ तेरे सामने जुम्बिश करते। और सना का शेर है
0: जी,
1: कि तेरी यादों के चरागों से मुनव्वर था सफर,
0: तेरी
1: तेरी
0: यादों
1: यादों
0: के
1: के
0: चरागों
1: चरागों
0: से
1: से, तेरी
0: मुनव्वर।
1: यादों के चरागों से मुनव्वर था सफ़र, वरना हर मोड़ पे हम भी कोई लग्जिश करते,
0: वाह वाह वाह वाह
1: वरना
0: वाह
1: हर
0: वाह
1: मोड़ पे हम भी कोई लग्जिश करते।
0: करते।
1: और एक मतला और एक तरी गज़ल थी, उसका एक मतला और
0: जी
1: चंद
0: इरशाद।
1: अशार। क्यों उसको कभी दिल ने भुला कर नहीं देखा,
0: क्यों उसको कभी
1: कभी
0: दिल
1: दिल ने
0: ने
1: भुला
0: भुला
1: कर
0: कर नहीं
1: नहीं
0: देखा।
1: क्यों उसको कभी दिल ने भुला कर नहीं देखा, जिसने के मेरी समत मुकर्रर नहीं देखा,
0: वाह वाह वाह वाह वाह जी,
1: जिसने के मेरी समत मुकर्रर नहीं देखा। उसने मतलब देखिए, मज़ा लीजिए शेर का,
0: जी
1: कि
0: इरशाद।
1: उसने भी कभी जब्त का पैकर नहीं देखा,
0: उसने भी कभी जब्त का पैकर
1: पैकर
0: नहीं
1: नहीं
0: नहीं
1: देखा,
0: देखा।
1: उसने भी कभी जब्त का पैकर नहीं देखा, जिसने मेरे अंदर का समंदर नहीं देखा,
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह
1: जिसने मेरे
0: वाह
1: अंदर का समंदर नहीं देखा।
0: देखा।
1: और वो शख्स भला कैसे निखर पाता कि जिसने,
0: क्या कहना।
1: वो शख्स भला कैसे निखर पाता कि जिसने कुंदन की तरह आग में तप कर नहीं देखा,
0: क्या बात, वाह जी वाह वाह वाह जी
1: कुंदन
0: वाह वाह
1: की
0: वाह वाह
1: तरह
0: वाह
1: आग में तप कर नहीं देखा। और ये गज़ल का शेर है, इसका मज़ा लीजिए,
0: जी
1: मुकम्मल
0: बताइए।
1: गज़ल का शेर है। हुस्न की तारीफ है कि किस तरह उन्हें देखता रहता मैं मुसलसल,
0: किस तरह
1: उन्हें
0: उन्हें
1: देखता
0: देखता
1: रहता
0: रहता
1: मैं
0: मैं
1: मुसलसल,
0: मुसलसल।
1: किस तरह उन्हें देखता रहता मैं मुसलसल, सूरज को किसी आंख ने जमकर नहीं देखा।
0: वाह वाह वाह
1: वाह जी
0: वाह
1: वाह,
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: सूरज को किसी आंख ने जमकर नहीं
0: क्या
1: देखा।
0: कहने क्या कहने।
1: और जिस शख्स को दौलत है हर एक चीज़ से प्यारी,
0: आहा,
1: जिस शख्स को दौलत
0: दौलत
1: है हर एक चीज़ से प्यारी, एक लम्हा सुकून उसको मैसर नहीं देखा।
0: क्या
1: वाह
0: क्या
1: वाह वाह जी
0: कहना
1: वाह,
0: है। वाह
1: मुकर्रर
0: वाह
1: जी,
0: वाह,
1: मुकर्रर जी वाह जी,
0: फिर
1: जिस
0: पढ़े।
1: शख्स
0: वाह
1: को,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: जी शुक्रिया शुक्रिया अजीज, जिस शख्स को दौलत है हर एक चीज़ से प्यारी, जिस शख्स को दौलत है हर एक चीज़ से प्यारी, एक लम्हा सुकून उसको मैसर नहीं देखा। और एक गज़ल एक मतलब और चंद अशआर देखिए आप। ज़मीं पर मोहब्बत की जब बात होगी,
0: जमीन पर
1: ज़मीं
0: जमीन
1: पर मोहब्बत की जब बात
0: बात होगी।
1: होगी, फलक से आताओं की बरसात होगी।
0: वाह वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह वाह,
1: ज़मीं पर मोहब्बत की जब बात होगी, फलक से आताओं की बरसात होगी, और बुजुर्गों से जब भी मुलाकात होगी,
0: क्या कहना।
1: बुजुर्गों से जब
0: जब
1: भी
0: भी
1: मुलाकात
0: मुलाकात
1: होगी,
0: होगी।
1: हर एक गुफ्तगू मिसले सौगात होगी,
0: वाह क्या
1: वाह
0: बात
1: वाह
0: है जी,
1: वाह,
0: वाह
1: हर एक
0: जी
1: गुफ्तगू
0: वाह
1: मिसले
0: वाह वाह
1: सौगात
0: वाह।
1: होगी। और शेर देखिए कि अभी मुश्किलें हैं मगर ये यकीन है,
0: अभी
1: अभी मुश्किलें
0: मुश्किलें
1: हैं,
0: हैं
1: अभी मुश्किलें हैं
0: मगर ये यकीन
1: मगर
0: है।
1: ये यकीन है कि मुझ पे भी रहमत की बरसात होगी।
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह
1: क्या
0: वाह
1: कहते हैं,
0: वाह
1: क्या, अभी
0: वाह वाह
1: मुश्किलें
0: वाह
1: हैं मगर ये यकीन है कि मुझ पे भी रहमत की बरसात होगी। नहीं सोचते हैं ये मंजिल के

0: अलिब,
1: नहीं सोचते हैं ये मंजिल
0: मंजिल
1: के
0: के
1: लिए। तालिब।
0: तालिब, नहीं सोचते हैं, नहीं सोचते हैं बिलाल साहब,
1: जी
0: नहीं सोचते हैं ये मंजिल के तालिब, कहाँ दिन कटेगा कहाँ
1: कहाँ
0: रात
1: रात होगी।
0: होगी,
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: जी वाह,
0: वाह,
1: जी वाह
0: कहाँ
1: वाह
0: दिन
1: वाह।
0: कटेगा कहाँ रात होगी, और अगर तुम मेरे हम कदम बन गए तो,
1: अगर
0: तुम
1: तुम मेरे
0: गज़ल का
1: हम
0: शेर है, अगर तुम मेरे
1: मेरे
0: हम
1: हम
0: कदम
1: कदम
0: बन
1: बन गए
0: गए
1: तो
0: तो ज़माने की हर शय मेरे साथ होगी,
1: वाह वाह
0: वाह,
1: वाह वाह वाह वाह
0: ज़माने की हर शय मेरे
1: मेरे
0: साथ
1: साथ
0: होगी।
1: होगी।
0: और शेर देखिए कि जगाने लगा हूँ ज़माने को मैं भी,
1: जगाने लगा हूं जमाने
0: जगाने
1: को मैं भी।
0: लगा हूँ ज़माने को मैं भी, मेरी मौत भी मिसले सुकरात होगी,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह
0: मेरी
1: वाह वाह,
0: मौत
1: क्या
0: भी मिसले सुकरात
1: कहना
0: होगी।
1: है। वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह जी
0: वाह,
1: वाह,
0: हर एक मसाले का, हर एक मसाले का निकल आएगा हल,
1: हर एक मसाले का निकल आएगा
0: हर
1: हल।
0: एक मसाले का निकल आएगा हल, मौज़म असूलों पे जब बात होगी,
1: वाह वाह वाह वाह
0: मौज़म
1: वाह, बहुत
0: असूलों पे
1: खूब।
0: जब
1: वाह
0: बात होगी।
1: वाह वाह
0: जी
1: वाह,
0: शुक्रिया।
1: बेहतरीन। दोस्तों अपने कलाम से हमें नवाज रहे थे जनाब मौज़म सैफी साहब। दोस्तों एक शायर ने कहा है कि हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा
0: हमारा
1: हो
0: हो
1: जाए,
0: जाए।
1: इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए।
0: वाह वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह वाह
1: और
0: वाह,
1: तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे,
0: तुमको लगता है
1: तुमको लगता है कि तुम
0: तुम
1: जीत
0: जीत
1: गए
0: गए
1: हो
0: हो मुझसे।
1: मुझसे, है
0: वाह
1: यही बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए।
0: वाह वाह वाह
1: वाह,
0: वाह जी
1: अपने
0: वाह,
1: खेल को भी हम दोबारा करते हैं। और हम अब सबसे पहले शायर हमारे डॉक्टर संदीप कुमार की जानिब चलते हैं। डॉक्टर साहब अपने कलाम से हमें एक बार फिर नवाजें।
2: शुक्रिया अमजद साहब।
1: जी इरशाद।
2: पेशे गजल के कुछ अशआर।
1: इरशाद जी,
2: साफ कह दे छुपा रहा क्या है,
1: साफ कह दे
2: साफ
1: छुपा
2: कह दे छुपा रहा
1: रहा
2: क्या
1: क्या
2: है,
1: है।
2: मेरे बारे तू जानता क्या है।
0: वाह
2: वाह,
0: वाह,
2: मेरे
0: मेरे
2: बारे
0: बारे तू
2: तू जानता
0: जानता
2: क्या
0: क्या
2: है,
0: है,
2: लब पे तेरा ही नाम आता है,
1: लब पे तेरा ही
2: लब
1: नाम
2: पे तेरा ही नाम
1: नाम
2: आता
1: आता है।
2: है, जब कोई पूछे हम नवा क्या है,
1: वाह
2: जब कोई
1: वाह वाह,
2: पूछे हम
1: हम
2: नवा
1: नवा
2: क्या
1: क्या है।
2: है।
1: वाह वाह वाह,
2: और शेर देखिए, हुस्न वालों का है अगर सब कुछ,
1: हुस्न
2: हुस्न
1: वालों
2: वालों
1: वालों का
2: का है अगर सब
1: सब
2: कुछ,
1: कुछ।
2: इश्क वालों का फिर भला क्या है,
1: इश्क
2: इश्क
1: वालों का
2: वालों का
1: वाह
2: फिर
1: फिर
2: भला
1: भला
0: क्या
1: क्या है।
0: है।
1: खूबसूरत है
2: और शेर देखिए, ये तो आदत है उसकी बरसों से,
1: ये तो
2: ये तो
1: आदत है
2: आदत है
1: उसकी
2: उसकी बरसों
1: बरसों से।
2: से, कह के सब कुछ कहें कहा क्या है,
1: वाह वाह
2: कह
1: वाह
2: के सब कुछ
1: वाह
2: कहें
1: वाह
2: कहा
1: वाह,
2: क्या
1: क्या है।
2: है।
1: वाह वाह वाह,
2: और शेर देखिए, कोई जब अपने आप में उतरे,
1: कोई जब
2: कोई
1: अपने आप
2: जब
1: में
2: अपने आप में
1: उतरे।
2: उतरे, जान जाता है देवता क्या है,
1: वाह
2: जान
1: वाह
2: जाता है देवता क्या
1: वाह,
2: है। और शेर देखिए, झूठ जब सच के भेष में देखा,
1: झूठ
2: झूठ
1: जब
2: जब सच
1: सच
2: के
1: के
2: भेष
1: भेष
2: में
1: में
2: देखा,
1: देखा।
2: तब समझ आया कि दगा क्या है,
1: वाह
2: तब
1: समझ
2: समझ
1: आया कि
2: आया
1: दगा
2: कि
1: क्या है,
2: दगा
1: दगा
2: क्या
1: क्या
2: है।
1: है।
2: और ये शेर मैं अपने दोस्तों की नजर करता हूं, तू नहीं है तो फिर सिवा तेरे,
1: तू नहीं
2: तू नहीं
1: है
2: है
1: है
2: तो
1: तो
2: फिर
1: फिर
2: सिवा
1: सिवा
2: तेरे,
1: तेरे।
2: मेरी नस नस में दौड़ता क्या है,
1: वाह
2: मेरी
1: वाह
2: नस
1: वाह
2: नस
1: वाह
2: में
1: वाह
2: दौड़ता
1: वाह
2: क्या है।
1: वाह, बहुत प्यारा
2: मुझ
1: शेर है जी। वाह वाह वाह वाह,
2: मुझको संदीप ये खबर ही नहीं, मुझसे
1: मुझ
2: आखिर हुई खता क्या है,
1: वाह
2: मुझसे
1: वाह।
2: आखिर हुई खता
1: ये
2: क्या
1: थे
2: है।
1: हमारे बहुत ही खूबसूरत शायर डॉक्टर संदीप कुमार साहब। लीजिए नाज़रीन, दोबारा से हम एक बार फिर गुजारिश करते हैं बहुत ही मरसा कलाम कहने वाले शायर जनाब हमजा बिलाल साहब से। गुजारिश है कि वो आप एक बार अपना कलाम फिर से सुनाएं।
3: जी बहुत शुक्रिया मुकर्रम साहब, और यह गज़ल के अशआर मुलाहिज़ा करें।
1: अच्छा
3: मतला अर्ज है कि गंगो जमन की बात नहीं कर रहा कोई,
1: गंगो जमन
2: जमन की बात नहीं कर रहा कोई,
3: गंगो जमन की बात नहीं कर रहा कोई, यानी वतन की बात नहीं कर रहा
2: वाह
3: कोई।
2: वाह वाह जी वाह वाह,
1: वाह
2: बहुत
1: वाह
2: प्यारा
1: वाह
2: शेर,
1: वाह वाह
2: बहुत
1: वाह
2: बहुत
1: वाह,
2: उम्दा।
3: गंगो जमन की बात नहीं कर रहा कोई, यानी वतन की बात नहीं कर रहा कोई। कहते हैं चांद देखने आए हैं बाम पर,
1: कहते हैं
3: कहते
1: चांद
3: हैं
1: देखने
2: चांद
1: आए,
2: क्या
1: आए
2: आए
1: हैं
2: हैं
1: बाम
2: बाम
1: पर,
3: चांद देखने आए हैं बाम पर, लेकिन घुटन की बात नहीं कर रहा कोई।
1: वाह
2: वाह जी
1: वाह
2: वाह,
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: जी
1: वाह
2: वाह,
1: वाह।
3: लेकिन घुटन की बात नहीं कर रहा कोई। शेर मुलाहिजा करें बतौर खास के,
1: क्या
3: क्या रूह तक सिमट गया सब कारोबार इश्क,
1: क्या
3: क्या
1: रूह
3: रूह तक
1: तक सिमट
3: सिमट
1: गया
3: गया
1: सब
3: सब
1: कारोबार
3: कारोबार
1: इश्क,
3: इश्क, क्या रूह तक सिमट गया सब कारोबार इश्क, कैसे बदन की बात नहीं कर रहा कोई।
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: वाह,
1: वाह वाह
2: क्या
1: वाह।
2: बात है।
3: और लब पर हंसी नहीं तो गिला कर रहे हैं लोग,
1: लब पर हंसी
3: लब
1: नहीं,
3: पर हंसी नहीं तो गिला कर रहे हैं लोग, दिल की चुभन की बात नहीं कर रहा
1: वाह
3: कोई।
1: वाह वाह वाह,

0: और हमजा बिलाल आप भी खामोश ही रहें।
1: हमजा बिलाल आप भी खामोश ही रहें।
0: हमजा बिलाल आप भी खामोश ही रहें। अहले सुखन की बात नहीं कर रहा कोई। बहुत शुक्रिया। और एक और गजल के चंद अशआर देखें कि अधूरी एक कहानी चल रही है,
2: अधूरी कहानी
1: चल रही है,
0: अधूरी एक कहानी चल रही है, मुसलसल जिंदगानी चल रही है।
2: वाह वाह वाह वाह।
0: और शेर बतौर खास के, लुटा दी जान हमने दोस्तों पर,
2: लुटा दी जान हमने दोस्तों पर,
0: लुटा दी जान हमने दोस्तों पर, रवायत खानदानी चल रही है।
2: वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा है।
0: लुटा दी जान हमने दोस्तों पर, रवायत खानदानी चल रही है, भरोसा भाइयों पर कर रहा हूं,
1: भरोसा
2: भाइयों
1: भाइयों पर
2: पर
1: कर
2: कर
1: रहा
2: रहा
1: हूं।
0: भरोसा भाइयों पर कर रहा हूं, वसीयत तक जुबानी चल रही है।
2: वाह वाह वाह
1: अच्छा
2: वाह
1: है,
2: वाह वाह
1: अच्छा
2: वाह।
1: है।
2: अच्छा है।
0: बहुत शुक्रिया। वसीयत तक जुबानी चल रही है, पढ़ा था मीर का एक शेर मैंने,
2: पढ़ा
0: पढ़ा
2: था
0: था
2: मीर
0: मीर
2: का एक
0: का
1: शेर
0: एक शेर
2: मैंने।
0: मैंने, पढ़ा था मीर का एक शेर मैंने, उसी की तर्जमानी चल रही है।
1: वाह
0: उसी
1: वाह
0: की
1: वाह वाह
0: तर्जमानी
1: वाह
0: चल
1: वाह
0: रही
1: वाह
0: है,
1: वाह।
0: वाह,
1: अच्छा है।
0: उसी की तर्जमानी चल रही है। और करेंगे यार तौबा बाद में हम,
2: करेंगे
0: करेंगे
2: यार
0: यार
2: तौबा
0: तौबा बाद
1: बाद में
0: में हम,
1: हम।
0: करेंगे यार तौबा बाद में हम, अभी तो नौजवानी चल रही है।
2: वाह वाह
0: वाह
2: वाह
0: जी,
2: वाह वाह। बिल्कुल
0: बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं फिर अपने काम पर वापस लौट रहा हूँ। और किसी शायर ने कहा था कि किया है अपने को बर्बाद, शेर कहने लगे,
2: किया है अपने को बर्बाद, शेर कहने लगे।
0: किया है अपने को बर्बाद, शेर कहने लगे, जब आ गई है तेरी याद, शेर कहने लगे,
2: वाह वाह वाह।
0: और बड़े बड़ों को बिगाड़ा है हमने ऐ राना, बड़े
2: हाँ
0: बड़ों को बिगाड़ा है हमने ऐ राना, हमारे लहजे में उस्ताद शेर कहने लगे।
2: वाह
0: वाह
2: वाह
0: वाह।
1: वाह।
0: मैं एक बार फिर से दावत दे रहा हूँ जनाब मौज़म सैफी साहब को, वो आए और अपने कलाम से हमें नवाजें।
3: जी शुक्रिया। एक गजल के, सरबसजदा हुआ,
2: सजदा हुआ,
3: सरबसजदा हुआ जब कोई बशर तो देखो।
0: आहा, सर्व
2: हाँ,
0: सजदा हुआ जब कोई बशर
2: बशर तो
0: देखो।
2: देखो।
3: सरबसजदा हुआ जब कोई बशर तो देखो, आ गया कितना दुआओं में असर तो
2: असर तो
3: देखो।
2: देखो।
0: वाह
2: वाह
0: वाह
2: वाह वाह
3: आ गया
0: वाह।
3: कितना दुआओं में असर तो देखो। और शेर देखिए कि तुम लगाकर कभी उल्फत का शजर तो देखो।
2: तुम लगाकर
0: लगाकर
2: कभी
0: कभी
2: उल्फत
0: उल्फत
2: का
0: का
2: शजर
0: शजर
2: तो
0: तो
2: देखो।
3: तुम लगाकर कभी उल्फत का शजर तो देखो, फिर जो आता है खिजा में भी समर तो देखो।
2: वाह वाह
0: वाह
2: वाह
0: वाह
2: वाह
0: वाह
2: वाह
0: क्या
2: वाह।
0: बात है।
3: फिर जो आता है खिजा में भी समर तो देखो। और गिरा लगाने की कोशिश की है,
0: जी इरशाद।
3: हर अदा उसकी कयामत का असर रखती है।
0: हर अदा उसकी कयामत का
2: उसका
0: असर
2: असर रखती
0: रखती है।
3: है, हर अदा उसकी कयामत का असर रखती है। एक नज़र तुम मेरा महबूबे नज़र तो देखो।
2: क्या बात,
0: वाह
2: वाह जी
3: वाह
0: वाह
3: वाह
0: वाह
3: वाह।
0: वाह वाह।
3: एक नज़र तुम मेरा महबूबे
0: महबूबे
3: नज़र
0: नजर
3: तो
0: तो
3: देखो।
0: देखो।
3: मैं सदा साथ तुम्हारे हूँ सितारों में जहाँ।
0: आहा,
3: मैं सदा साथ तुम्हारे हूँ सितारों में जहाँ। मेरे दिल का वो हसीं ख्वाब नगर तो देखो।
0: वाह
3: वाह
0: वाह
3: वाह
0: वाह
3: वाह।
0: वाह वाह वाह।
3: गज़ल के शेर हो गए थे चंद। और इस बुलंदी पे पहुँचना मेरा आसान तो न था।
0: इस
3: इस
0: बुलंदी
3: बुलंदी पे
0: पे पहुंचना
3: पहुंचना
0: मेरा
3: मेरा
0: आसान
3: आसान तो
0: तो
3: न
0: न
3: था।
0: था।
3: इस बुलंदी पे पहुंचना मेरा आसान तो न था। जेर से आप जबर तक का सफर तो देखो।
2: वाह
3: वाह
2: वाह
3: वाह
2: वाह
3: वाह।
2: वाह। बहुत खूब, बहुत
3: जेर
2: खूब।
3: से आप जबर तक का सफर
0: सफर
3: तो
0: तो
3: देखो।
0: देखो,
3: और जिंदगी की नई तस्वीर बनाने के लिए,
2: जिंदगी की नई
3: जिंदगी की
2: तस्वीर
3: तस्वीर
2: बनाने
3: बनाने
2: के
3: के लिए,
2: लिए।
3: एक अंधेरे से जो उभरी है सहर तो देखो।
2: वाह
3: वाह
2: वाह
3: वाह
2: वाह
3: वाह
2: वाह
3: वाह।
2: वाह।
3: शेर देखिए कि क्या लुभाएंगे तुम्हारे ये सितारे मुझको।
0: क्या
3: क्या
0: लुभाएंगे
3: लुभाएंगे
0: तुम्हारे
3: तुम्हारे
2: ये
3: ये
2: सितारे
3: सितारे मुझको।
2: मुझको।
3: क्या लुभाएंगे तुम्हारे ये सितारे मुझको। मेरे हाथों में हैं खुद शमसो कमर तो देखो।
0: वाह
3: वाह
0: वाह
3: वाह
0: वाह
3: वाह
0: वाह
3: वाह।
0: वाह।
3: मेरे हाथों में हैं खुद शमसो कमर तो
0: तो
3: देखो।
0: देखो,
3: और ज़हनो दिल में कोई तस्वीर बना देता है,
2: ज़हनो दिल में कोई
3: कोई
2: तस्वीर
3: तस्वीर
2: बना
3: बना
2: देता
3: देता है,
2: है।
3: बात कहने में मुअज़्ज़म का हुनर तो देखो। वाह
0: वाह
3: वाह
0: वाह
3: वाह
0: वाह
3: वाह
0: वाह
3: वाह वाह
0: वाह।
3: वाह।
0: दोस्तों आप सुन रहे थे जनाब मौज़म सैफी साहब को, और हमारी ये खूबसूरत शेरी नशिश्त अपने इख्तिताम के बहुत करीब पहुंच गई है। फहमी बदायूनी साहब ने कहा था कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता कहीं पे था ही नहीं,
2: वाह वाह वाह।
0: रात भी हमने ही सदारत की,

0: भी हमने ही सदारत की, बज्म में और कोई था ही नहीं।
1: वाह वाह वाह वाह
0: मैं आवाज दे रहा हूं जनाब मुकर्रम सैफी साहब को कि वो
1: जी
0: आखिर में अपने कुछ अशार से हमें नवाजे।
1: जी हमजा बिलाल, वक्त को मुलहुज़े खास रखते हुए मैं सीधा गजल पे आता हूँ।
0: जी इरशाद।
1: मरासिम चाहे तुम गहरे ना रखना,
0: मरासिम चाहे तुम गहरे न रखना,
1: मरासिम चाहे तुम गहरे ना रखना, पर दिल में बुझ के शोले ना रखना।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: दिल
0: बहुत
1: में
0: प्यारा।
1: बुझ के शोले ना रखना, तुम्हें ऊंचा उठाएगी मोहब्बत,
0: तुम्हें
1: ऊंचा उठाएगी मोहब्बत। तकब्बुर के कभी जीने न रखना, तकब्बुर के कभी जीने न रखना, और मुनाफिक की नहीं ताजीम कोई,
0: मुनाफिक की नहीं ताजीम,
1: मुनाफिक की नहीं ताजीम
0: कोई,
1: लगाकर चेहरे पे चेहरे न रखना, लगाकर चेहरे पे चेहरे न रखना। हवा जब फैसला करके ही आए, हवा जब फैसला करके ही आए, चिरागों से गिले शिकवे न रखना। हवा जब फैसला करके ही आए, चिरागों से गिले शिकवे न रखना। दिलों को जीतना चाहो अगर तुम,
0: दिलों को जीतना चाहो,
1: दिलों को जीतना चाहो अगर तुम, किसी की सोच पर पहरे न रखना।
0: क्या
1: किसी की सोच पर पहरे न रखना। और आखिरी शेर के, बड़े होने का मतलब ये नहीं है,
0: बड़े होने का मतलब ये नहीं है,
1: बड़े होने का मतलब ये नहीं है, किसी के वास्ते दर्जे न रखना।
0: और
1: पेशे खिदमत है कि तुम्हें घर मोतबर बनना है सैफी,
0: तुम्हें घर मोतबर बनना,
1: तुम्हें घर मोतबर बनना है सैफी, जबां पर झूठ के किस्से न रख।
0: क्या वाह वाह वाह वाह। दोस्तों हमारी ये महफिल अब खत्म हुआ चाहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुनते रहें ऑल इंडिया रेडियो जालंधर।
2: हुणे तुसीं सुन रहे सी मुशायरा, जिहदे विच शोरा हज़रात सन मुहम्मद मुअज़्ज़म सैफी, हमजा बिलाल, मुहम्मद मुकर्रम सैफी ते डॉक्टर संदीप कुमार। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी दा इह जलंधर केंद्र है। हुण तुसीं साडे सारे प्रोग्राम वेव्स ऐप राहीं भी सुन सकते हो, अपने मोबाइल ते प्ले स्टोर च जा के वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो, नाल ही न्यूज़ ऑन AIR ऐप, इहदे ते भी साढ़े सारे प्रोग्राम सुन सकते हो। स्टूडियो घड़ी के मुताबिक रात के 11 बज रहे हैं। आओ हुण तुहानू लै चलते हैं साढ़े दिल्ली केंद्र, जिथों तुसीं सुनोगे समाचार हिंदी दे विच। कुछ पल का इंतज़ार ते फिर होणगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की

0: पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की 70वीं बैठक में वेल और अन्य समुद्री स्तनधारी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हुबार्ट में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री स्तनधारी जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह और कांस्य पदक जीतने वाले रोहित यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर पारुल चौधरी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यशवीर सिंह और कांस्य पदक हासिल करने पर रोहित यादव को बधाई दी। राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को भविष्य में और अधिक सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by RS Raghu. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Conference on Prahar National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts in recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted, more than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said, at the same time, the government declared Shehzad Bhatti Network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority Sheikh Hamid bin Zayed Al Nahyan. Addressing media after the meeting, Mr. Goyal said India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year from $863 billion.

0: दोस्तों स्वागत प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा दोस्त गौरव थोड़े नाल है और कॉल करने लिए नंबर हाजिर है 0181-2342-171। आ देखो ये कॉल बजदी है ना इदा बस इदा ही तुसी नंबर मिलाओ कॉल बजेगी आओ कर दें गलबात। नमस्कार जी कौन बोल रहे ने?
1: हेलो
0: हेलो जी कौन बोल रहे ने?
1: बढ़िया है जी।
0: कांता जी केड़ी जगह तो गल कर रहे हो? सोलन तो गल कर रहे हो तो सोलन का मौसम किदा था? ठंड शुरू हो गई या नहीं अजे?
1: हाँ जी बहुत बारिश हो गई जी।
0: बारिश? हाँ बारिश तो अज इत्थे भी हुई सी सवेरे सवेरे ते तुहाडे भी बारिश काफी हुई है?
1: काफी हो गई जी और वहाँ पे पर कांगड़ा पालमपुर में बर्फ पड़ी हुई जी।
0: बर्फ पड़ी है पालमपुर च जी?
1: हाँ जी जी तक ट्रेनिंग को गया ना पुलिस की।
0: अच्छा पालमपुर च बर्फ पड़ी है तो मतलब फिर आना पैना सानू जे बर्फ पै गई है तो। तो चलो ये दसो गीत केड़ा सुनना है? केड़े सिंगर दा गीत सुनना है?
1: गीत सुना दो सर जी आप कलाकार तो बहुत है पंजाबी है ना?
0: हाँ जी
1: कलाकार काफी है पंजाबी में।
0: हाँ बहुत सारे कलाकार ने सरदूल सिकंदर दा सुनाया दलजीत दोसांझ है और एमी विर्क है बहुत सारे कलाकार ने तुझे किन्ना दा सुनना है? बब्बू मान तो इलावा होर केड़े केड़े सिंगर तोड़े फेवरेट ने? अच्छा मतलब सारे ही तुहानू बहुत पसंद ने?
1: हां जी हां जी।
0: चलो वधिया गल है इसी तरह सारे जड़े सिंगर ने तुहानू पसंद ने तो सानू भी उन्होंने गीत चलाने बहुत पसंद है। तो फिर तुम बब्बू मान जी की गीत नू सुनने की फरमाइश की है वह गीत तुहानू सुनाने हैं साढ़े नाल जुड़े हो सानू कॉल की है बहुत बहुत धन्यवाद कांता जी।
1: ठीक है सर जी आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे चले।

0: सारे।
1: शुक्रिया जी, तुहानू सारिआं नू पसंद है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
0: हाँ जी हाँ जी सर, आपने कॉल उठा दी उसके लिए धन्यवाद जी,
1: थैंक यू जी,
0: क्योंकि
1: धन्यवाद।
0: बहुत बार कॉलें लगी ऐसे जाती थी, मतलब रेंज जाती थी।
1: देखो जी, टाइम लगता है और टाइम का फल मिठा होंदा है, ते आओ फिर सुनदे आ तुहाडा गीत। धन्यवाद।
0: ठीक है,
1: ये सन कांता वर्मा जी और बब्बू मान का, इन्होंने गीत सुनना। बब्बू मान के बहुत सारे गीत मेरे को पे ने, आओ फिर एक गीत जरा मेरे भी दिल के बड़ा करीब है। वैसे तो मेरे सारे गीत दिल के बहुत करीब ने, पर कुछ गीत ने जोड़े बहुत चंगे लगते हैं जो खास करके बब्बू मान जी की आवाज़ गाए जाते हैं, तो आओ सुनते हैं फिर।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी थोड़ा सारिया का अपना मनपसंदीदा स्वागत। जो तुम भी नंबर मिलाना चाहते हो तो नंबर मिला लो 0181 2341 171। हजे तक तक कोई नंबर जोड़ा है मेरे नाल जुड़िया नहीं, आया नहीं, मेरे को पहुँचया नहीं, ठीक है ना। देखो जी घंटी नहीं वज रही, घंटी बजा सकते हो 0181 2341 171। जिन्हें नंबर नहीं लगते मिलाओ, हूँ नंबर लगन गए। तो जो मैसेजा की गल करा तो कुछ मैसेज मेरे को पे ने, आओ जी हूँ वो मैसेज पढ़ दें जोड़े पहले आए सी। लाओ पहले आए मैसेज दे विच सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना गुरबंश सिंह जोड़ा, ये भी जुड़े ने। लो जी कॉल चक लें, कि कॉल आई है, गलबात करते हैं उन्होंने सारे नाल। नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
1: भूषण कटारिया मंडौर तो बोलना शर्मा जी।
0: भूषण कटारिया जी बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी तो नहीं, कोचर जी जरूर बैठे ने, गौरव बोल रहे हैं जी।
1: अच्छा गौरव जी बोल रहे
0: हैं। अरे नहीं सारे शर्मा एंड वर्मा ऑल आर सेम। शर्मा कितने मानते ने?
1: शर्मा जी आवाज सेम है।
0: केड़े शर्मा जी? शाम शर्मा जी।

प्रोग्राम चल रहा है जी सौगात और आखिरी कुछ पल जड़े ने थोड़े नाल ने क्योंकि रात के 12:52 जड़े ने वो हो गए ने और मैसेज मेरे को कुछ पए ने आओ पढ़ दियो मैसेज टी डी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप ते इन्हां दे बहुत सारे साथी जुड़े ने सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र कुमार मलकीत कौर आरती रानी राघव हरमन ते इन्हां दा सारा परिवार ज़िला अंबाला हरियाणा तो साढ़े नाल ने इन्हां दा भी धन्यवाद और एक होर मैसेज आया है इन्होंने अपना नाम नहीं रखिया कोई लिंक भेजिया देखो जी लिंक ना भेजो नाम भेजो सानू निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया ते आयान बाबू ये भी जुड़ गए ने तेली वाला तो बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद मैसेज किया है तुसी सानू शंभू दयाल खटक विमला देवी अमरजीत सुंदर लाल खटक योगेश कुमार दीपक कुमार कुमारी पूजा खटक ये पिंड जाखौद राजस्थान तो ने आ जाओ जी राजस्थान वाले तुसी भी आ जाओ बस तुहाड़ी घाट सी तुहाड़ी थोड़ सी तुहाड़े प्यार दी लोड़ सी शिवाजी चौंक कटनी तो अनिल ताम्रकार अमर दिलीप राजू रजन रंजन विपिन प्रकाश अरुण संजय पवन सुनील लालू सोना मोना हनी ते उन्होंने बहुत सारे साथी वो भी जुड़ गए ने जी आया जी

गुरबाणी प्रभु दी उस्तत है, सच्ची सिफत सलाह है, सच्चे दी कीर्ति है। मनुखी मन अते इंद्रियां दा उचित प्रयोग यही है कि इन्हां नूं चंगे पासे लाया जावे। इस नाल समा भी सफल हुंदा है ते इंद्रियां दा परिवार भी सफल हुंदा है, पर यह समा प्रभु दी कृपा सदका ही टुकदा है। सूही राग विच उचारे हुए शब्द विच पंचम गुरदेव बेनती करदे हुए फरमाउंदे ने, हे दीना उत्ते दया करन वाले दयालु प्रभु, मेरी बेनती सुनो। जिस तरह साधुजन सदा प्रभु दे गुण गा के रस माणदे हन, अमृत रस प्राप्त करदे हन, कृपा करो मेरे लिए भी ऐसा जोग बनाओ कि जिस वेले मेरी रसना भी प्रभु दा नाम उचार सके। हे प्रभु जी, आप जी दी याद सिमरन ही मनुखा जीवन है। जिस उपर प्रभु जी आप मेहर करदे हो, उही आप दी निकटता हासिल कर सकदा है। आप उससे दे ही अंग संग हो जांदे हो। प्यारे जीवानू आप जी दे सच्चे नाम दी भुख हुंदी है, ते इस नाम दे दाते प्रभु जी आप ही हो। सृष्टि विच रमे हुए राम नू चेते कीत्या ही संतां प्रभु प्यारिया ने आत्मिक सुख माणिया है, ते ए दात सब किछ जाननहार प्रभु दे हथ विच ही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 743 ते फरमान है, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द का गायन कीता है भाई गुरमेज सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द का गायन किया सी भाई गुरमीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। आपे बहुबिद रंगला सखिए मेरा लाल, नित रवै सुहागणी देख हमारा हाल। इसी तरह ही फरमान है, आपे हर एक रंग है।

आपे बहुरंगी। गुजरी राग विच उचारे हुए शब्द विच पंजवें पातशाह मन नू मोह लैण वाले प्रभु नू प्राणा दा आसरा जिंद जान मंदे ने। उस रंगले प्रभु नू अपने हिरदे विच वस्या जान के उसकी अश्चर्ज लीला नू वेखते हुए प्रसन्न हुंदे ने ते हिदायत करदे ने कि दिने राती उस प्यारे प्रभु की आराधना करन दे कारज विच ढिल नहीं करनी चाहीदी। अपने मन का हठ त्याग के संतां दी सेवा भावना रख के मन नाल करनी चाहीदी है। उस प्रभु नू जेते कीत्यां मन विचों विकारां दा जंजाल लह जांदा है।

उस प्यारे प्रभु की आराधना करन दे कारज विच ढिल नहीं करनी चाहीदी। अपने मन का हठ त्याग के संतां दी सेवा भावना रख के मन नाल करनी चाहीदी है। उस प्रभु नूं जेते कीत्यां मन विचों विकारां दा जंजाल लह जांदा है, मन आनंदित हो जांदा है, उस दी आराधना करनी बनती है। फिर जदों उस नाल मिलाप हो जांदा है तां उस आनंद दी महिमा बयान तों परे है। इसे करके फरमान है, दिन राती आराधो प्यारो निमख न कीजै टीला, संत सेवा कर पावनी लाइए त्याग मान हाठीला। इस शब्द का गायन किया है भाई गुरिंदर सिंह होरां दे रागी जत्थे ने।

0: दिन राती आराधो प्यारो निमक न की जय टीला संत सेवा कर पावनी लाइए त्याग मान हठीला। इस शब्द अगायन की तसी पाई गुरिंदर सिंह ते उनादे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आं इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने प्रिंसिपल बलदेव सिंह।
1: यह पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंग 478 गुजरी राग विच श्री गुरु अर्जन देव जी दे पवित्र मुखवार बंद तो उचारिया होया है। गुरु साहिब जुग्यासु नूं संबोधित हुंदे होए फरमाउंदे हन कि हे प्यारे गुरसिखो, परमात्मा दा नाम जपो, उस दी आराधना दिन रात स्वास स्वास करदे रहो। दिन राती आराधो प्यारो निमख ना कीजै ढीला। इन्हां पावन पंक्तियां विच आराधो शब्द आया है जो कि आराधना शब्द तो बनिया है। आराधना पुरातन संस्कृत का मूल शब्द है जिसका अर्थ है पूजा करना, भक्ति करना, इबादत करना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच आराधना शब्द की वरतों गुरु साहिब जी ने बार बार की है, जिमें आराधो आराध आराध्या आराधी। परमात्मा की आराधना करने वाला मनुख आप तो सरदा है, अपने नाल जगत को भी तार दिता है। गुरबाणी का फरमान है जन नानक नाम आराध्या सब जगत तराया। जेडे मनुख परमात्मा की आराधना करते हैं उन्हां दे बराबर कोई होर नहीं हो सकता। गुरबाणी का फरमान है जन नानक नाम आराध तू तिस अपड़ को ना सकाही। आराधना का कोई समा स्थान निश्चित नहीं है क्योंकि परमात्मा हर जगह ते है ते जदों मर्जी उसनू असीं याद कर सकते हैं। गुरबाणी का फरमान है जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई, गुर किरपा ते हर मन वसै होर तबिद लया ना जाई। परमात्मा आप पूरा है, उसका नाम पूरा है, सो हे मनुख परमात्मा दे नाम दी आराधना कर। गुरबाणी का फरमान है पूरा प्रभ आराध्या पूरा जा का नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। इस तरह गुरबाणी का एक होर शब्द है आराधना आराधनिका हर हर नाम आराधना, उदा सोना नाम हे मनुख तू जपना कर। गुरबाणी का फरमान है जे सुख देहे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई, जे भुख देहे ता इत ही राजा दुख विच सुख मनाई। भाव जड़ा उदी आराधना करता है उदा दुख सुख भुख प्यास सब मुक जांदी है ते वह सुरखरू हो जाता है। दिन राती आराधो प्यारो निमखना कीजै ढीला। उक्त पंक्ति विच गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हे मनुख प्रभु की उस्तत दिन रात करदा रहो अते अख चमकण जिन्ना समा भी ढिल ना कर। गुरबाणी का फरमान है प्रभु की उस्तत करो दिन रात तिसे त्यावो सास ग्रास। शब्दियां अगलियां पंक्तियां हन संत सेवा कर भावनी लाइए त्याग मान हठीला। मनुख नूं अपने मन विच्चों हठ हंकार नूं त्याग के भय भावनी अते पूरी श्रद्धा सत्कार दे नाल गुरु साहिब वल्लों दसी सेवा करनी चाहीदी है। गुरबाणी का फरमान है बिन सतगुर भगत न होवई, नाम ना लगे प्यार, जन नानक नाम आराध्या गुर कै हेत प्यार। शब्दियां अगलियां पंक्तियां हन मोहन प्राण मान रंगीला, बास रहो हीरा के संगे पेख मोहो मन लीला रहाओ। खिड़े सुभाव वाला अते मन नू मोह लैन वाला सुंदर प्रभु मेरे प्राणा दी जिंद जान है, जिंद दा फकर है, ओह हमेशा मेरे हिरदे विच वसदा है। मेरा मन उसदे कौतक वेख वेख के विस्माद हो रहा है अते मस्त हो रहा है। गुरबाणी का फरमान है सगल बनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में घीया, ऊंच नीच में जोत सम

0: गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली तरत सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजार नानक मुसे ज्ञान विहुनी खाए गया जमकाल माला पहला
1: वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा चाटे पाए

सब कोई नच नच हसे चले से रोए उड़ना जाही सिद्ध ना होए नचन कुदन मन का चाओ

पौड़ी बिन सतगुर के ने ना पायो, बिन सतगुर के ने ना पाया। सतगुर विच आप रख्यो कर प्रगटाक सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम विचार है जिन सच्चे स्यों।

पौड़ी बिन सतगुरु के ना पायो, बिन सतगुरु के ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचों मुँह चुकाया। उत्तमे विचार है जिन सच्चे सोच चित लाया।

निशान पौड़ी सच्चा साहेब एक जिन सच्चा सच वरताया जिस दिस मिले सच ता तिनी सच कमाया।

विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड पह कर बार सब तो पूरा आपे होवे कट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाईए ता नानक तो लिया जापे।

त्रि सदंग सूर सदंग सुदर सदंग प्राकृत है सर्व सदंग एक सदंग जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन दियो महला दूजा। एक कृष्ण सर्व देवा देव देवाता आत्मा आत्मा बस देवा जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन दियो महला।

सवैये श्री मुख बाक्या महला पंजवा आदि पुरख करता कारण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल का

अकल कला है प्रभ सर्व को धन जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखान है हाँ के बल बल बल बल सद बल।

0: अशल पूरन अबनासी हर खवन अनंतर निर्मल विगासी गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को हो हे कृपा सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जनन मरण दो थेरे हो तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जनन मरण दो थेरे हो
1: सत सत हर सत सत सते सत फणिया दूसर आन अवर पुरख पौरातन सुनिया अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेह रसन चाखियो तेजन तिपत अगाए जेह ठाकर सो प्रसन्न पियो सत्संगत प्यार हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उदार जे ठाकर सो प्रसन्न पियो सत्संगत प्यार हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उदार
2: सच सभा दीवान सच सच्चे बेहतरो सच्चे तख्त निवास सत पावस करो सच सिरजो संसार आप भुल न भुलो रतन नाम अपार कीमनो बवे अमुलो जय कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुर नानक जिन परस्यो ते बोर फिर जोड़ ना आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन भी दुस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर कीम ना परिय ब्रह्मानक संकाद से गुणंत ना पाए अगौ ग्यो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ सेजन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते
3: प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक सरना मिले दान संतरेन जे लख पौ जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत त्यो मन ठहरावे बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी इक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म
4: जब लो नहीं।

फिर संकट जोन गर्भ न आयो। काची दे मोह फुन बांधी सठ कठोर कुचील को ज्ञानी तावत भ्रमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी। जो बन रूप माया मद माता बिचरत बिकल बड़ो अपमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा जह मीठी जी माहे तानी। बल बंच शाप करत उपावा पेख तो सुन तो प्रभ अंतर जामी। सील धर्म दया सोच नासत आयो शरण जी के दानी। कारण करण सुमरा।

0: देह न गेह न नेह न नीता, माया मत कहां लोगारो, शतर न पतर न चोर न चावर, बहती जात हृदय न बिचारो, रथ न असव न गज सिंघासन, छिन में त्यागत नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दृष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, करत विकार दउ कर चारो, मित्र न पुत्र क्लतर साजन सख, उल्टत जात बिरख की शारो, दीन दयाल पुरख प्रपूरन, छिन छिन सिमरो अगम पारो, श्रीपत नाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो।
1: रंचक रेत खेत तन निर्मत, दुर्लभ दे सवार तरी, खान पान सोदे सुख पुंचत, संकट काट विपत हरी, मात पिता भाई अर बंदप, बूजन की सब सूझ परी, वर्धमान होवत दिन प्रतनित, आवत निकट

हमें आवे गुण पर एक गुण नाही, अमृत छाट बिखे बिख खाई, माया मोह परम पै पुले

मुक्त पदार्थ तिनको पाए। हर के नाम रति लेवलाए, गोर सेवाती हर नाम तन पावे। अंतर परगास हर नाम त्यावे, रहाउ एहो हर रंग गूड़ा तन पिर हो। सांत सीगार रावे प्रभ सो, प्रभ कोई न पाए। मूल हो पुल्ला जनम।

रती प्रभ आप मिलाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला तीजा, सदा तन अंतर नाम संभाले। जीव जंत जिन्ह प्रतपाले, मुक्त पदार्थ तिन को पाए। हर के नाम रते लेवलाए।